0: त्योहार हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं?
1: ईद उल फितर मीठी ईद को कहते हैं और ईद उल अजहा बकरीद के दिन को कहते हैं
0: जी।
1: तकरीबन मीठी ईद के ढाई महीने बाद बकरीद का दिन आता है
0: जी। ढाई महीने बाद, ठीक है,
1: ढाई महीने के बाद
0: जी।
1: और इसका मकसद ईद उल अजहा का, बकरीद का ये है कि इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि रब की मर्जी के मुताबिक, रब की रजा के खातिर इंसान अपनी जान माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता है, अल्लाह की रजा के लिए, रब को खुश करने के लिए, रब को मनाने के लिए
0: जी।
1: इस बात को जाहिर करता है इंसान कि हम जो आए हैं दुनिया में ये रब के लिए आए हैं और जो कुछ भी रब ने हमें दिया है ये सब भी रब ही के लिए है
0: जी।
1: इसलिए हम अपनी जिंदगी में सारा मसला उठना बैठना खाना पीना जागना सोना लेटना और सारी बंदगी, सारा जद्दोजहद, सारी खुशियां और ये सारी नेमतें ये सब रब की रजा के लिए पेश करें रब की बारगाह में, ताकि रब हमारे हर अमल से राजी और खुश हो जाए
0: जी।
1: ये मेन ईद उल अजहा का मकसद है और ईद उल अजहा इसी मकसद को बयान करता है। जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे जिन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो भी पैगंबर थे, बाप भी पैगंबर और बेटा भी पैगंबर, तो बाप हजरत इब्राहिम ने बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करके रब की बारगाह में पेश की तो रब ने उनकी कुर्बानी कबूल की। हजरत इब्राहिम का इम्तिहान था कि इब्राहिम अपने रब की रजा के लिए अपनी औलाद को भी पेश करते हैं या नहीं, उन्होंने पेश करके दिखाया। तो मेन मकसद ईद उल अजहा का और बकरीद का यही है कि रब की रजा और रब की खुशनुदी बंदा हासिल करे।
0: मौलाना साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस जो त्योहार है हम क्यों मनाते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बयान किया है। मौलाना साहब, अगर हम इस त्योहार की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये कितना ज्यादा जरूरी है?
1: देखिए, जो कुछ भी रब के पैगंबर ने या रब के खास बंदों ने
0: जी,
1: नबियों ने, रसूलों ने किया है, जो रब के खास है, रब के नुमाइंदा है, रब के नायब है, तो वो हमारे लिए उनका हर अमल और हर हुक्म बजा लाना जरूरी है हमारे लिए
0: जी।
1: तो ये जरूरी है क्योंकि यही हमारा ईमान है और इन्हीं बातों पर हमारा यकीन है। इससे हमारा ईमान भी मजबूत होता है कि हम रब के खास पैगंबरों के बताए हुए तरीके पर चलें और उनके हुक्मों पर अमल करें। यह अमल करना ही ईमान है
0: जी, जी।
1: उनकी बातों को मान लेना ही ये यकीन कामिल की दलील है। इसीलिए कोई भी मुस्लिम और मोमिन बंदा जो रब के जात पर ईमान रखता है वो रब के पैगंबरों पर भी ईमान रखता है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो रब के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की अपने बेटे की रब के रजा के खातिर रब की बारगाह में, तो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रब के आखिरी पैगंबर थे और तमाम नबियों के सरदार थे हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे अपने पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तुम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर के तरीके पर अमल करो और तुम भी कुर्बानी पेश करो ताकि पैगंबरों के हुक्म पर अमल करना हो जाए
0: जी।
1: तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम पैगंबर के हुक्मों को माने। जो पैगंबर के हुक्मों को मानता है वही रब को मानता है
0: जी।
1: जो पैगंबर को नहीं मानता वो रब को कैसे मान सकता है? इसलिए करना ईद उल अजहा में कुर्बानी और बकरीद मनाना जरूरी है हमारे लिए
0: जी।
1: रब के पैगंबरों ने किया
0: जी। कुतुबुद्दीन जी, जैसे आपने कहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी का जो किस्सा है वो आपने हमारे साथ शेयर किया है, इस त्योहार को सेक्रीफाइस यानी कि कुर्बानी का त्योहार भी बोलते हैं। कुर्बानी का जो असल मतलब है क्या है, कि ये इंसानियत को क्या पैगाम देता है?
1: कुर्बानी का असल मकसद ये कुर्बानी, कुर्बानी कुर्ब से है। कुर्ब एक अरबी का शब्द है, अरबी का लफ्ज है, इसका माना आते हैं कि रब के करीब हो जाना
0: जी।
1: यानी बंदा ऐसा अमल करे, ऐसा काम करे, ऐसी बंदगी करे कि जिसके जरिए रब तक पहुंच जाए,

0: जिसको रब का कुर्ब, रब की नजदीकी हासिल हो जाए, उसे कुर्ब कहते हैं। कुर्ब से ही कुर्बानी है
1: जी।
0: ये तो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा सबक है कि इंसान पैदा ही इसलिए दुनिया में हुआ है कि वो रब के नजदीक होने के लिए कोई अच्छा सा अमल ऐसा करे कि जिससे रब के नजदीक हो जाए और रब उससे खुश हो जाए, राजी हो जाए। ये कुर्बानी का मेन मकसद और मेन इसका जो मंशा है वो यही है कि रब के करीब आदमी हो जाए, उसे कुर्ब कहते हैं कुर्बानी
1: जी।
0: कुर्बानी का मतलब यही
1: जी। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में आपने इस त्योहार की जो इम्पोर्टेंस है, इसकी हिस्ट्री है, वो हमारे साथ, हमारे लिसनर्स के साथ आपने शेयर की है। जाने से पहले कोई ऐसा मैसेज इस त्योहार के रिलेटेड जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहो?
0: जी हाँ, वो मकसद मैं ये बयान करूंगा कि ईद, ईद उल फित्र हो, मीठी ईद हो
1: जी,
0: या ईद उल अजहा बकरीद का मुबारक त्योहार हो, ये दोनों त्योहार का मेन मकसद यही है तमाम भाइयों के लिए, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, हिंदू भाई हो, ईसाई भाई हो, ये तमाम मजाहब और तमाम कौमों के लिए ये हमारा त्योहार एक पैगाम देता है कि हम आपस में मजबूती और इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें। क्योंकि त्योहार ईद का मकसद ही यही है, चाहे वो बकरीद हो चाहे ईद उल फित्र हो, मकसद ही उसका यही है कि हम आपस में इत्तेफाक मोहब्बत के साथ खुशियां मनाएं, रब की बंदगी करके खुशियां मनाएं, रब की नमाज पढ़ करके खुशियां मनाएं, रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करके खुशियां मनाएं, फिर नमाज पढ़ करके हम आपस में अपने तमाम भाइयों को बुलावें, उसमें हमारे हिंदू भाई भी, सिख भाई भी, ईसाई भाई भी तशरीफ लाएं हमारे घर मेहमान बनकर, और हम उनकी इज्जत करें, एहतराम करें, उनके साथ हम खुशियां मनाएं, मुसर्रत और शादमानी का इजहार करें। ये असल पैगाम है इंसानों के लिए, ये हमारी ईद उल फित्र और ईद उल अजहा का। लिहाजा इस पैगाम को हमारा और सबका ये फरीजा है कि इस पैगाम को हमेशा जिंदा रखें, कि जो पैगाम हमें खुशियां अता करता है, हमें राहत देता है, सुकून देता है, इत्तेफाक और इत्तेहाद का सबक देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, उस त्योहार को भी जिंदा रखें और आपस के इत्तेफाक और मोहब्बत को भी कायम रखें
1: जी। मौलाना कुतुबुद्दीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जुड़े, और इस त्योहार को कैसे मिलजुल कर मनाना चाहिए वो आपने हमारे साथ बयान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया
2: जी दोस्तों, AC मौलाना कुतुबुद्दीन जी, जिन्होंने इस खूबसूरत त्यौहार नूं, फेस्टिवल नूं किवें मिलजुल के सैलीब्रेट करना चाहिए है। कोई भी त्यौहार इदा दा हुंदा है भारत दे विच, भावें दिवाली होवे, भावें होली होवे, भावें क्रिसमस होवे, असीं एक दूजे दे घर जांदे हां, खुशियां जिहड़ियां ने ओह वंडदे ने, एक दूजे दे नाल मिल के सैलीब्रेट करदे ने। ते अज वी इदा त्यौहार है, तुहाडे जिहड़े दोस्त ने उहनां दे घर जाओ, तुहानूं इन्नियां टेस्टी टेस्टी जिहड़ी डिशिज़ ने, रेसिपीज, हाँ डिशिज़ ही कह सकदे हां आपां, ओह मिल जुल के जदों आपां खांदे हां, गल्लां करदे हां, मतलब खुशियां जिहड़ियां ने ना ओह वंड के डबल हो जांदियां ने। ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਵਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ।

अपनी जिंदगी च आजादी प्राप्त की ऐसा कोई शख्स हिंदुस्तान के इतिहास च नहीं मिलता जिंदा सावरकर अंदाजा लगाओ सारी जिंदगी जेलां च कट गई अंग्रेजों यातनावां सहंदी बीत गई। इसी गल ने मेनू ना जी अंडेमान निकोबार लै करके एमएलए दी इक टीम नूं जाना पिया उतों दी सैलूर जेल नूं मैं देख करके धावा मार मार के रो पिया इस काले पानी च वीर सावरकर जैसे आदमी की छोटी जी ने कोठरी च कैद करके रखा सी 6 महीने ओनू किसी ने गल नहीं कर ली सी कोल्लू दे दाल दी तरह ओनू नारियल दा तेल कढ़न लई मजबूर कीता गया। उस आदमी दे पैरां च बेड़ियां पाईयां गईयां जे निश्चित मात्रा तों घट तेल अगर नारियल दा कढ़िया ते कोड़े पैणगे अगर किसी ने गल कीती तां कोड़े पैणगे। उत्थे खाना उत्थे पीना उत्थे शौच इत्यादि करनी ओह जेल देख के कमरा देख के मैं डर गया और कंकड़ा नाल दीवारा च कविता लिखिया उसने बहादुर वीर सावरकर ने कंकड़ पत्थर नाल दीवारा पढ़ करके कविता मैनू अपने मोबाइल से की ना पर मैं ऐसा क्रांतिकारी दुनिया

0: कि देखा नहीं कभी ऐसा आदमी भी है कोई वीर सावरकर वर्गा इतिहास नहीं आएगा।
1: जी बिल्कुल जी जी सर। सर सावरकर जी का भारत की आजादी की लहर विच सब तो वड्डा योगदान की रहा है?
0: देखो जी उसने रत्नागिरी च नजरबंदी च नासिक जेल च अंडीमान जेल च अंग्रेजा के खिलाफ इस हिंदुस्तान आजाद कराने वास्ते ना जी उसने सारी जिंदगी लड़ाई लड़ी। उसने इस हिंदुत्व नू हिंदुत्व जिन्हू कहने हिंदू कौन है इस शब्द की उन्होंने बड़ी व्याख्या मेरे पास किताबा चार पांच मैं बसा वर्ग कर दिया। हिंदुत्व च उन्होंने पूछा है लोगों को कि दसो हिंदुत्व की है। हिंदू वो है जिहड़ा सिंधु नदी तो लै करके हिंद महासागर के अंदर विशाल भू भाग नू अपनी पितृभूमि पुण्य भूमि मातृभूमि समझदा है वो हिंदुस्तानी है। भावे वो मुसलमान है भावे वो सिख है भावे वो ईसाई है भावे किसी भी धर्म है भावे बोधी है पारसी है जैनी है ये सारे हिंदू है जेडे इस देश की धरती नी कश्मीर तो कन्याकुमारी तक जेडे इस देश नू अपनी पितृभूमि अपनी मातृभूमि और अपनी पुण्य भूमि समझते ने और इस देश की मिट्टी नू मच्छर से लगा करके एक प्रसाद की तरह अपने आप नू अलादे कर रहे ने वो हिंदुस्तान है
1: जी।
0: हिंदू जी कोई धर्म नहीं है एक जीवन पद्धति है एक सांस्कृतिक मंच नू हिंदुत्व का एक राजनीतिक मंच उन्होंने खड़ा करता जी।
1: तुम
0: दादा लगाओ अकेला आगरी उसने राष्ट्रीय स्वयं सेवक भी दादा ने जी लिया जिस वेले उसने हिंदुत्व की व्याख्या सारे देश की। अज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो दुनिया की सब तो बड़ी संस्था वही सावरकर को फॉलो कर रही है भिन्न भिन्न फॉलो कर रही
1: जी।
0: और ऐसे इंसान मैं समझना या गुरु गोविंद सिंह जी से जिन्हें सब कुछ अपने देश के उत्ते भागता चार साहेबजादे बारे मां बाजी पत्नियां भाइया आपे शहीद हो गए गुरु गोविंद सिंह और सावरकर अलोन इकला आदमी अंग्रेजा के खिलाफ एक फिलासफी करके गया वो फिलासफी सी हिंदुत्व की उसी सांस्कृतिक एकता की उसी देश अखंड है एक है और भारत राष्ट्र है एक पूरा राष्ट्र है सार्वभौमिक राष्ट्र है जिन्हों दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती जैसा उन्होंने क्रांतिकारी पुस्तक भी लिखिया उन्हें कविता भी लिखिया बहुत सारे राइटर्स ने जो कविता लिखिया वीर सावरकर ही लिखिया
1: जी जी जी।
0: दो दिन किताबा पढ़ी एक सामन की किताब सी बड़ी अच्छी कविता सी मैंने बाकी घट समझ लगती सी पर फिर भी जो मैं अध्ययन की कर मैं कमाल दे लगती सी।
1: जी सर बिलकुल वो एक महान शख्स सी ते जिवें तुसीं एक्सप्लेन कीता है कि हिंदुस्तान नूं आजाद कराण दे विच उहनां दा महत्वपूर्ण उहनां ने योगदान दित्ता ते अंग्रेजां दे सामने उह कदे वी नहीं झुके ते मैं जिहड़ा उहनां दी जिहड़ी लाइफ है उहदे बारे गल करना चाहूंगी कि वीर सावरकर दे बचपन अते परिवारक जिहड़ा उहनां दा माहौल सी उहनां दी सोच ते देश भगती नूं किवें प्रभावित कीता उस माहौल ने?
0: क्रांतिकारी वीर सावरकर का सारा परिवार
1: जी
0: चार धारा रंगया बन गया सीगा। उनकी पत्नी उनका बेटा एक होया देहांत हो गया लड़की एक है इस तरीके का सारा परिवार जिहड़ा ने देश भगती दे रंग च रंगया सीगा
1: जी।
0: और परिवार के संस्कार ऐसिया जगह उनके दिमाग च सावरकर च पा गए ता जिंदगी वो अंग्रेजा न लड़े देश स्वतंत्र हो गए ये देश अंग्रेजा तो मुक्त हो गए आगे देश की तरक्की हो गए ये हिंदू राष्ट्र जो है ये सर्वभौमिक सर्व संपन्न सर्व शक्तिमान।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है।

वो लिखते ने, एक औरत का कोई आकाश नहीं होता, वह काम से लौटकर भी काम पर लौटती है। वाह जी वाह, दो लाइना ने लेकिन इन्हां दे जिहड़े मतलब ने, इन्हां दा जिहड़ा इसका मतलब है लाइन का, वह बहुत ज़्यादा डीप है। जे कोई इदा दी वुमेन है जिहड़ी औरत है वह वर्किंग है, मतलब जिहड़ा बाहर जाके काम करती है, ऑफिस दे विच समाज दे विच काम करती है, तो काम तो जिदा वह वापस वह आती है ना, तो घर दे विच भी उसका इंतजार हो रहा होंदा है। क्यों? काम दे वास्ते।

मोहब्बत का मजा ही जुदाई के बाद है, लेकिन दोस्तों आप पता जुदा होना ही नहीं है क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गीत बहार। सो अगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, गर्मी का मौसम अब तो चुकी जाता है ना, गर्मी पूरे जोरों शोरों नाल पै रही है ते बहुत ज़्यादा कई बार हुमस जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है ते की करना है जी। बिल्कुल अपने आप नूं हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। सो जदों भी घरों निकलो, चाहे प्यास लगी होवे चाहे ना लगी होवे, चाहे होवे कि असीं 5 मिनट विच तां वापस आ जाना इत्थे किते जाना, तद भी अपने नाल पानी दी बॉटल कैरी करना बिल्कुल भी नहीं भुलना जी। और प्यास लगे ना लगे, असीं थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीना ही पीना है क्योंकि इसकी साड़ी बॉडी नूं बहुत ही ज़रूरत है। असीं वेट नहीं करनी कि जदों प्यास लगेगी उदों ही पानी पीवांगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पींदे रहना चाहिदा है। और बहुत वधिया होएगा जेकर दिन की स्टार्टिंग असीं पानी का गिलास पी के करिए ते जिहड़ी दिन की क्लोजिंग है वह भी पानी पी के ही करिए, क्योंकि रात पर फिर साड़ी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। जदों सवेरे उठना है तो फिर भी पानी की जरूरत है क्योंकि बॉडी नूं एक्टिवेट करन दे लई सानूं पहला गिलास पानी का जरूर पीना चाहिए।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है।

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज अते एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 134वीं कड़ी।

इंजॉय कर रहे जी 102.7 एफएम रेनबो ते दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है जी पंजाबी तड़का ते पंजाबी तड़का दे विच तड़का लगाओगे तुसी जी अपनी फोन कॉल्स दे जरिए सो दोस्तों जिवें कि तुसी जानदे ही हो कि पंजाबी तड़का प्रोग्राम दे विच तुसी करनियां हुंदियां कॉल्स ते असी गलबात करांगे तुहाडे नाल ते तुहाडी फरमाइश ते गीत भी प्ले कीते जाणगे सो जेकर तुसी भी चाहते हो कोई साढ़े नाल किस्सा कहानी कोई गलबात शेयर करना सांझी करना साढ़े नाल या साढ़े जरिए लिसनर्स दे नाल तां फिर देर नहीं करो जी नंबर डायल करो 0181-43-174 ए नंबर डायल करके तुसी साढ़े नाल राबता कायम कर सकते हो गलबात कर सकते हो ते अपनी सिफारिश दा गीत भी सुन सकते हो ते लो जी प्रोग्राम नू असी शुरू करन जा रहे हाँ पहला गीत मैं लगावांगी अपनी पसंद दा ते अगला गीत होएगा जी तुहाडी पसंद दा सो फटाफट उठा लो फोन ते डायल करना शुरू कर दिओ जी 2342-174 ते प्रोग्राम दे विच पहला गीत मैं तुहाडे लई प्ले करन जा रही हाँ लो जी एंजॉय करो

0: एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम पंजाबी तड़का 102.7 एफएम रेनबो ते। अगले कॉलर भी पहुंच चुके हैं साढ़े तक। हेलो
1: हेलो, सत श्री अकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैम सोनू बोल रहे हैं जी, पिंड कुका तलवंडी डिस्ट्रिक्ट कपूरथला तो। मैम
0: सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। बिलकुल, जो ज्यादा गर्मी हो जाती है परमात्मा अपने आप ही बैलेंस कर दिंदा है ना सब कुछ। हां बिल्कुल, चलो ये तो जेडे मौसम सुहावना होया है आरजी तौर ते है, गर्मी फिर वधनी है अजे। ते मैनू ए दसो कि गर्मियां दे विच केड़ी चीज तुहाडी फेवरेट है, केड़ी चीज सबसे ज्यादा?
1: वैसे गूंद कतीरा ते लस्सी ते नींबू पानी मैडम, तीन चीजा जी।
0: अच्छा, रूटीन च कदी कदी जदों गर्मी लगे बस उदों ही?
1: हां जी हां जी मैडम, तकरीबन ज्यादा गर्मी होवे ना फिर लस्सी
0: चीट करन नू दिल नहीं कीता? निजात हासिल होंदी रहेगी है ना। बहुत ही वधिया, ते मैनू तुसी दसो कि गीत तुहाडे लई केड़ा प्ले करिए?
1: गीत मैडम बब्बू मान दी आवाज च सुना दिओ, टच वुड मैम।
0: टच वुड, ठीक है। यही गाना क्यों मैडम? बहुत प्यारा गीत है, पसंद का गीत असीं जरूर प्ले करांगे जी। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम
0: जी। फरमाइश आई है बब्बू मान की आवाज़ दे विच गीत सुनना है, गीत इन्हां नूं जरूर सुनावांगे पर छोटे जे ब्रेक तो बाद। ते दोस्तों जेकर तुसी वी गलबात करना चाहते हो तो नंबर साडा है 0181 43 174, नंबर डायल करो ते फटाफट पहुँचो साढ़े तक जी। फोन के जरिए पहुँचो साढ़े तक, गलबात करो ते अपनी पसंद का गीत भी सुनो। थानू बब्बू मान की आवाज़ दे विच गीत मैं सुनान जा रही हाँ, ते उस तो पहला एक छोटा जिहा ब्रेक।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक

इंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है जी, होम स्वीट होम तुहाड़ी दोस्त आरजे निवेदिता दे नाल। वेल दोस्तों प्रोग्राम होम स्वीट होम असी गल्लां करांगे बहुत सारियां तुहाड़ी सेहत दियां, तुहाड़े घर परिवार दियां, तुहाड़े समाज दियां, सारियां गल्लां करांगे कि किवें अपने आप नूं असी सेहतयाब रखना है, किवें अपने घर नूं सोहणा खुशहाल बना के रखना है, किवें अपना आला दुआला साफ रखना। बहुत सारियां ढेर सारियां गल्लां बातें लैके मैं हाजिर हो गई हां जी प्रोग्राम दे।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: इंजॉय कर रहे हो जी 102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज। दोस्तों मिड डे मेलोडीज दे विच अज असी गल कर रहे हैं सुरीली अदाकारा हेमलता जी दी। तो दोस्तों प्रोग्राम दे माहौल नू थोड़ा जिहा बदलदे हां ते प्यार विच एक पेंडू सुगंध हुंदी है जो देसीपन हुंदा है उसका आनंद लैंदे हां। दोस्तों फिल्म सी नदिया के पार जिस दे गीत अज भी हर व्याह शादी या खुशी के मौके पर गूंजते हैं, पर इस फिल्म में एक बहुत ही मासूम ते प्यारा जिहा रोमांटिक गीत सी जिथे रस्ता भुलण के बहाने प्यार दियां गल्लां हुंदियां ने। जसपाल सिंह जी ते हेमलता जी की आवाज़ दे विच ये गीत सुनदे आ ते आओ वापस चलदे आ वो पुरानियां यादां दे विच। कौन दिशा में लेके चला रे बहुरिया।

0: मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ਅਤੇ ਐਫਐਮ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ। ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ 134ਵੀਂ ਕੜੀ।
1: ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ।
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ।

0: खुशी का ये हिस्सा बन गया। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन हाँ मैं पर्सनली पढ़ लाँगी। लेकिन तुसी अपना ना तुहाड़ा ना की है, किस शख्स ने सानू यही भेजी है? मोहम्मद मुजफ्फर, मोहम्मद अरमान, बहुत बहुत शुक्रिया जी। लेकिन मैं तुहानू पहले ही कहा सी कि शायरी जिहड़ी है वो छोटी होनी चाहिए है। थैंक यू जी तुसी प्रोग्राम दे विच शिरकत कीती। ते अगला मैसेज असीं पढ़ते हाँ। उसे किसी से मोहब्बत ना थी, मगर उसने गुलाब तोड़ के दुनिया को शक में डाल दिया। वाओ, हुण साडे कोल इक होर मैसेज आया है। दर्द कितना है बता नहीं सकते, जख्म कितने हैं दिखा नहीं सकते, आँखों से समझ सको तो समझ लो, आँखों से समझ सको तो समझ लो, आंसू गिरे हैं कितने गिना नहीं सकते। सोनू फ्रॉम ओमान तो सानू यह मैसेज आया है, तो बहुत खूब। अगले मैसेज असी पढ़ते हाँ, पर उस तो पहला असी एक छोटा जिहा जिहड़ा है असी गज़ल जिहड़ी है वह सुनांगे, ताकि दिल होर ज़्यादा तुहाडा ना मोटिवेट होए कि हाँ असी शायरी भेजनी है, तो शायरी लिखनी है, क्योंकि म्यूजिक शायरी लिखन दे विच बहुत मदद करता है। चलो जी अगला सुनते हाँ, आह को चाहिए एक उमर।
1: जगजीत सिंह, जिन्होंने कलाम के इंतखाब से लेकर गजल की अदायगी तक गजल को एक नया रंग, एक नया नूर बख्शा।
0: जगजीत जी की आवाज इतनी सोहनी है कि हर गजल इतनी सोहनी लगती है। एक होर गजल मेरे दिमाग दे विच आ रही है, सी ओह सुनांगे, पहला ए बात विच सुनांगे। प्रोग्राम तुसी ट्यून किया है जी, दिलाश शायर है, तो तुसी ट्यून किया 102.7 मेगाहर्ट्ज़, ते मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक।

सब कुछ मिलता है इस दुनिया में, सब कुछ मिलता है इस दुनिया में फराज, बस वो नहीं मिलता जिससे मोहब्बत हो। जिंदगी कम पड़ गई वरना वो ना मिलता, मजाल उसकी। ना कर नसीब पे इतने गिले इकबाल, जब खुदा राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। तुम भी गालिब कमाल करते हो, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायत खुदा से करते हो। फराज इकबाल ते साडे जेड़े ने गालिब साहब ने किन्नी खूब यह शायरी लिखी है, है ना। तो इस तरीके दे नाल साडे दोस्तों ने भी साडे तक शायरियां पहुँचाइया ने, ते एक दोस्त ने बहुत ही सोहनी लिख के भेजी है, मैं तुहाडे नाल सांझी कर रही हाँ। एक कहानी हमारी भी थी जो शुरू तो बहुत खूबसूरत हुई थी, जहाँ हर बात में अपनापन था, हर पल में खुशी थी और हर ख्वाब में बस एक ही चेहरा था। और उस वक्त लगता था कि ये कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। हमने उस रिश्ते को दिल से जिया, हमने उस रिश्ते को दिल से जिया था, हर छोटी छोटी चीज में उसे महसूस किया था, उसकी हंसी में अपनी खुशी ढूंढ ली थी, उसकी हंसी में अपनी खुशी ढूंढ ली थी और उसकी हर बात को अपनी आदत बना लिया था। बहुत खूब जी, ते ये सानू भेजी है मोहम्मद मुजफ्फर मोहम्मद अरमान जी ने, बहुत शुक्रिया जी, तुम फिर तो भेजी है, बट हाँ बहुत सोनी है। अगली साढ़े को आई है जी परमजीत गोपाल नगर जलंधर, तो इन्होंने सानू लिखिया है, हे मित्र रास्ता लंबा लंबा हो या कठिन, हिम्मत का दीपक बुझने मत देना, कदम छोटे हो तो भी चलना जारी रखो, क्योंकि रुक जाना हार है और निरंतर बढ़ते रहना ही सच्ची जीत है। ये जिहड़ी है ना, असीं कह सकते हैं कि ये शायरी तो नहीं है, इनू असीं कोट कह सकते हैं, इसनू असीं एक कोट दी तरह लै सकते हैं, बट ये शायरी नहीं है। पर फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया जी तुसीं साडे नाल जुड़े। तो एक होर इन्होंने लिखा है, इंसान के अंदर अगर संतोष है तो वह सबसे ज़्यादा अमीर है, अगर शांति है सबसे ज़्यादा सुखी है, सही गल है, अगर दया है तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मीनी यूनिक, और अगर स्वस्थ है तो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है। तो स्वस्थ रहने लई तुहानू करना की पएगा, तुहानू पीना पएगा पानी बहुत सारा, क्योंकि अज दी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी दे विच अपना ख्याल रखो, तंदुरुस्त रहो। जुड़े रहो प्रोग्राम दे विच दिलाज शायर है, मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक, ट्यून कीता जी 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते अपनी दोस्त महक दे नाल।

मन की बात माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत दी जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 31 मई 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इस दा प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ਅਤੇ ਐਫਐਮ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ। ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ 134ਵੀਂ ਕੜੀ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com

अगर सफ़र था और पीछे हम सफ़र था, अगर सफ़र था और पीछे हम सफ़र था, रुकते तो सफ़र छूट जाता और चलते तो हम सफ़र छूट जाता। ये खूबसूरत जियां लाइना जेड़िया ने राहत इंदौरी जी ने लिखी है, ते बहुत ही खूब लिखा है कि सही गल कही है कि सफ़र और हम सफ़र दोवें बहुत ज़्यादा जरूरी ने, तो दोहां दे विच बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुसीं इदां नहीं कर सकते अपने हम सफ़र दे पिछे अपना सफ़र छड दो ते सफ़र दे पिछे हम सफ़र, नहीं, दोहां नूं नाल लै के चलना है। तो चलो जी, हुण चलन दी वारी मेरी भी आ गई है, तो एक खूबसूरत जी असीं गज़ल सुनते हाँ, उस तो बाद तुसीं प्रोग्राम इंजॉय करोगे रेडियो डॉक्टर, फिर उस तो बाद प्रोग्राम आएगा संदेश टू सोल्जर।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त पूजा। आज कार्यक्रम में हमारा विषय है प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस, यानी मौखिक और दंत समस्याओं से कैसे बचाव करें। और इस खास विषय पर हमारे साथ हैं डॉक्टर हरमीत सिंह, जो हैं डेंटल स्टाफ सर्जन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: थैंक यू जी, थैंक यू।
1: श्रोताओं, ओरल हेल्थ हमारे पूर्ण स्वास्थ्य का आईना होती है। अगर मौखिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है, खासकर हमारे पाचन तंत्र पर। डॉक्टर साहब, अगर हम दांतों और मौखिक स्वच्छता की बात करें तो ये कितना जरूरी है हमारी सेहत के लिए? दांत और मुंह में परेशानी आने के कारण क्या है, क्यों ये खराब होते हैं दांत?
2: देखिए, ओरल कैविटी जो मुख है, इसको पहले इट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ जनरल हेल्थ ऑफ द बॉडी, मींस पूरे जनरल हेल्थ का स्टेटस जो है ओरल कैविटी से पता चल जाता है। ठीक है, अगर उसके जनरल कंडीशन पेशेंट की डेंटल कंडीशन की पुअर है, कि उसमें दांतों में कैविटीज हो रही हैं, उसके मसूड़े खराब हैं, उसमें पायरिया लग रहा है, और या उसके मुंह के अंदर सफ़ेद निशान या कैंडिडाइस जिसको बोलते हैं वो हो जाता है, या उसके कोई इम्पैक्टेड टीथ हैं उसकी वजह से स्वेलिंग है, या पेशेंट कोई आर्टिफिशियल डेंचर्स पहनते हैं, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सब हम आज इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। इसके अलावा टीएमजे की प्रॉब्लम्स हैं, जो जो जॉ का जॉइंट होता है या बड़ा जो हिलता है जॉइंट, तो उससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल पब्लिक में, और उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मुँह में काफ़ी अल्सर्स हो जाते हैं, कई बार वो सिस्टेमिक डिसीजेज जो बॉडी की जनरल डिसीजेज हैं उससे रिलेटेड हैं, कई बार फीवर के साथ अल्सर्स आ जाते हैं और कैंसर तक का रूप ले लेते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस शो में।
1: जी, तो सुना श्रोताओं आपने, आज हम डिस्कस करेंगे दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की और मुंह में होने वाली परेशानियों की। डॉक्टर साहब, इस खास विषय पर बहुत सी जानकारी आपसे लेंगे। पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कैविटी की। अगर बात कैविटी की करें तो कौन सी लापरवाही है जिसकी वजह से दांतों में कैविटी की समस्या हो जाती है?
1: देखो, डेंटल कैविटीज जो है बहुत ज्यादा सभी दांतों में, ऑलमोस्ट जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं सब में कैविटीज होती हैं। और जो इसका प्रमुख कारण है वो है कि हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं करना। जैसे कि हम हमेशा पब्लिक में और पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि ब्रश जो है ट्वाइस डेली करना चाहिए, 2 मिनट के लिए करना चाहिए, और कौन सी टूथपेस्ट के साथ करना चाहिए ये भी बताते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट रिकमेंडेड है, जो कि एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री है, उसमें हम हमेशा रिकमेंड करते हैं फ्लोराइड होना चाहिए, बिकॉज फ्लोराइड है वो कैविटीज को प्रिवेंट करता है, कि कैविटी को रोकता है। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है वो है हाइड्रोक्सीएपेटाइट, एनेमल। ओके, बट एनेमल में भी केरीज हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो फ्लोराइड है वो हाइड्रोक्सीएपेटाइट को फ्लोरोएपेटाइट में कन्वर्ट करता है, विच इज स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल हाइड्रोक्सीएपेटाइट। सो हमें हमेशा फ्लोराइड टूथपेस्ट ही यूज करना चाहिए। उसकी क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए, किस एज ग्रुप में, वो सब मैं आपको साथ साथ इस प्रोग्राम में बताता रहूंगा।
0: जी जी जी डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, ले लेते हैं उनका कॉल।
1: जरूर।
0: हेलो।
2: हेलो
0: जी।
2: हाँ, सबसे पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आपको भी
1: नमस्कार।
2: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही अर्ज कर रहा हूँ।
0: जी।
2: तो मेरे 4 छोटे-छोटे सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि कई शख्स कहते हैं हमारे मुंह में 32 दांत हैं, कई कहते हैं 28 हैं, क्योंकि मेरे मुंह में स्वयं 28 दांत हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये मतलब मदर फादर की वजह से ही ऐसा होता है, या फिर हमारा कोई कुदरतन मतलब ऐसी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है। पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो अक्कल दांत होती है, जो अक्कल दांत जिसे कहते हैं, अगर अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसका हमें घरेलू स्तर पर क्या करना चाहिए उपाय। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हम खाना खाने से पहले भी हाथ धोते हैं और खाना खाने के बाद भी हाथ धोते, और ऐसा ही अगर हम जो है दांत साफ करते वक्त ऐसा करें तो कोई हर्ज तो नहीं। और चौथा और आखिरी सवाल वो ये है कि हम कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, किसी भी पेस्ट को इस्तेमाल कर ले, किसी भी ब्रश को, न जाने होता क्योंकि 15 मिनट के बाद आधे घंटे के बाद मुझसे सेमलानी फिर शुरू हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले चिगम का इस्तेमाल करते हैं।

0: तो हमें क्या करना है, ये मेरे चारों सवाल है, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: जी डॉक्टर साहब, इनके सवाल आपने सुन लिए,
2: तीन चार सवाल हैं इनके। तो सबसे पहला सवाल तो इनका ये था कि इनके 28 दांत हैं और इनके 32 क्यों नहीं हैं। तो इसका रीजन ये है कि पहले जो इंसान था, मतलब सेंचुरीज काफी सालों से पहले, तो उस टाइम जो है रॉ फूड खाता था, फ्रूट तोड़ा और वो खा लिया, पका के या सॉफ्ट फूड नहीं खाता। तो उस टाइम पे 32 दांतों की इंसान को जरूरत होती थी। तो जैसे जैसे इंसान की डेवलपमेंट हुई, सॉफ्ट फूड पे आया, तो ऐसे ऐसे 32 जॉ का साइज जो है श्रिंक होता जा रहा है। तो उसकी वजह से जो 32 दांत होते थे, जो लास्ट के मोलर हैं, विजडम टीथ जिसको कहा जाता है, वो अब या तो इरप्ट ही नहीं होते हैं, या इरप्ट होते हैं तो टेढ़ी मेढ़े डायरेक्शन में होते हैं, तो वो फिर फर्दर प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए चिंता की बात नहीं, अगर आपके 28 दांत हैं तो वो भी नॉर्मल ही है, तो आपको कोई आर्टिफिशियल लगवाने की जरूरत नहीं है। सेकंड ये है कि अगर इम्पैक्टेड टीथ हैं, जो कि विजडम टीथ जिसे कहते हैं, अगर वो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो फिर आप उसका चेकअप कराइए आपके नियरेस्ट डेंटल सेंटर पे। अगर वो कोई पैथोलॉजी उसके साथ एसोसिएटेड है, या वो अगर टेढ़ा है और वो साथ वाले दांत को डैमेज कर रहा है, तो फिर उसका एक्सरे करा करके उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। या कई बार क्या होता है, जो इम्पैक्टेड टूथ है, जो अभी निकला ही नहीं है, उसके ऊपर गम की कवरेज होती है, तो वो बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन करती रहती है, उसको शोर थ्रोट भी होता है, कई बार उनको फीवर भी हो जाता है रिकरेंट उसकी वजह से। तो आपका चेकअप होना चाहिए, एक्सरे होना चाहिए। अगर उसके साथ टूथ बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको सर्जिकली हम रिमूव करते हैं। अगर कोई टूथ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ कोई पैथोलॉजी एसोसिएटेड है, कई बार इम्पैक्टेड टीथ के साथ सिस्ट, रसोली या कोई ट्यूमर भी एसोसिएट हो जाता है, तो इसका रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए एवरी 3 ईयर और 5 ईयर। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक एक्सरे जरूर होना चाहिए, कहीं उसके साथ कोई पैथोलॉजी तो एसोसिएटेड नहीं है। तो इस तरह से हम इम्पैक्टेड टीथ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
1: जी जी, तो सुना श्रोताओं आपने कि जो दांत है हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपना जो हम स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना है वो इन्हीं से चबाते हैं और हमारे पेट तक जाता है, और इनकी खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस की। इससे अगर आपको भी है कोई आपके मन में सवाल या जानना चाहते हैं कोई बात, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ना। डॉक्टर हरमीत सिंह है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, हम कैविटी की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि कैविटी की समस्या क्यों होती है, इसका कैसे पता चले कि किसी को कि उसको कैविटी हो गई है, और इसका निदान क्या है?
2: देखिए, कैविटीज की जो नॉर्मली समझा जाता है कि कैविटीज जो है ब्लैक कलर की, जिसमें होल हो जाता है, वो कैविटीज हो गई हैं, ठीक है। बट ये स्टार्ट होता है एज अ डेंटल केरीज, जो कि एक वाइट स्पॉट लीजन की तरह स्टार्ट होता है। ये लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है इस चीज के बारे में कि वाइट स्पॉट लीजन जो होते हैं, डेटर एक्चुअली डेंटल केरीज जो इनिशियल स्टेज में है, जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं उसको कैविटीज में प्रोग्रेस होने में। तो वो बहुत अच्छी स्टेज है उसको प्रिवेंट करने की। हम उसको फ्लोराइड टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं, और उनको फ्लोराइड जेल टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए देते हैं, और फ्लोराइड वार्निश अप्लाई करते हैं क्लिनिक में, तो उससे जो है हम डेंटल कैविटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बार हमने सुना होगा और देखा होगा, अपने साथ भी होता है कि जब हमें दांत में दर्द होता है तो हमें लगता है कि इसकी क्या वजह है, कि कोई कैविटी हो गई है, या ये जो दर्द है वो नॉर्मल है। तो कैसे पता करें कि ये दांत का जो दर्द है वो नॉर्मल है या कैविटी है उसमें?
2: नहीं, देखिए, उसके लिए आपको एक दंत चिकित्सक के पास, डेंटिस्ट के पास ही जाना होगा। वो क्लिनिकली चेक करेंगे कि दांत कि में कैविटी है, या कोई उसके साथ गम्स की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या कई बार कुछ लोगों को न्यूरेल्जिया जैसी पेन होती है, करंट की तरह लगता है, तो उसमें दांत की कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी दांत में पेन होती है। कई बार टूथ जो है क्रैक हो जाता है, जो कि विजिबल नहीं होता क्लिनिकली और रेडियोग्राफिकली भी, एक्सरे में भी नहीं दिखता है, तो उसको जो है क्रैक टूथ सिंड्रोम जैसे कि हम कहते हैं, तो वो डेंटिस्ट के पास जाकर ही आप अपना डायग्नोसिस करा सकते हैं और ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हम आगे बात करेंगे। एक श्रोता जुड़ गए हमारे साथ कॉल लाइन पर। हेलो।
3: हेलो
1: जी।
3: हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार जी।
3: डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरी एज 48 है।
2: हाँ जी। और
1: आप अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम कुंवर सिंह है
1: जी।
3: तो मेरे ये टीथ में गैप आ रहे हैं, तो उसका क्या इलाज है? नीचे वाले दो जो फ्रंट के टीथ में ज्यादा गैप आ रहा है
1: जी,
3: तो उसका सोल्यूशन क्या है? इस एज में क्या किया जा सकता है ये, और धीरे धीरे वाइडन होते जा रहे हैं।
2: देखिए, जैसे कि आपने एज अपना 48 बताया है, तो जनरली इस एज में गैप होना का कारण ये

0: हो सकता है कि आपके टीथ जो हैं वो वीक हो रहे हैं, मीन्स उसके गम्स जो हैं जो इसको होल्ड करके रख रहे हैं वो गम्स वीक हो गए हैं, तो हो सकता है कि उसमें बोन रिजॉर्प्शन हो गया हो, बोन जो है दांतों को छोड़ के नीचे चले जाने की वजह से टीथ का फ्लेयरिंग हो जाता है, तो गैप हो सकता है उसकी वजह, तो आपको एक डेंटल सर्जन से चेकअप कराना चाहिए, तो जो भी उसका कारण है उस कारण को दूर करके उसका सोल्यूशन किया जा सकता है।
1: जी, उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कैविटी की, अब हम बात करते हैं पायरिया की। ये किस तरह की बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं और बचाव कैसे करें इससे?
0: देखिए, पायरिया एक जनरल टर्म है जो कि साइंटिफिकली हम उसको जिंजिवाइटिस या पेरिडोनटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से होता है कि जब कोई पर्सन जो है ठीक से ब्रश नहीं करता है और उसका प्लाक जो है डिपॉजिट रह जाता है दांतों के ऊपर, तो उसकी वजह से जो प्लाक है वो इरिटेट करता है, बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते हैं तो वो इरिटेट करते हैं गम्स को, मसूड़ों को, तो उसकी वजह से तो बॉडी का रिएक्शन होता है, तो गम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जैसे ही पेशेंट ब्रश करता है तो उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और होता यह है कि पेशेंट ये समझता है कि ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्रश करना छोड़ देता है, वो उंगली से क्लीन करना शुरू कर देता है, तो होना ऐसा नहीं चाहिए। अगर आपका प्लाक डिपॉजिट है मसूड़ों के आसपास तो ब्रश रेगुलर करते रहना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए, और इसके अलावा अगर फिर भी अगर प्रॉपर केयर ना की जाए तो जिंजिवाइटिस फर्दर प्रोग्रेस हो जाती है पेरिडोनटाइटिस में। उसमें क्या होता है, गम्स के साथ साथ बोन भी जो है डाउन मूव करना शुरू कर देते हैं, रिजॉर्प्शन होना शुरू कर जाते हैं, तो उससे जो है पॉकेट्स बन जाती हैं गम्स में, पेरिडोनटल पॉकेट्स जिनको हम कहते हैं, और साथ साथ टीथ की मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, तो इन सबको टुगेदर हम बोलते हैं पायरिया हो गया है। तो उसके लिए प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक करनी चाहिए और डेंटल फ्लॉस करना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। हम सबको बोलते हैं ब्रश एंड फ्लॉस योर इफ यू वांट टू क्लीन द टीथ।
1: जी, श्रोता हूं आपको एक बार फिर बता दे कि आज हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस, यानी मौखिक और दंत समस्याओं से कैसे बचाव करें, इस विषय पर। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आपकी सेहत से जुड़े कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज है हमारे साथ डॉक्टर हरमीत सिंह, जो हमें बता रहे हैं प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस जैसे खास विषय पर बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल।
2: हाँ जी जरूर।
1: हेलो।
3: हाँ जी नमस्कार, मैं सपना बात कर रही हूँ।
1: जी
3: सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं, हम सबको इतना बेनिफिट मिलता है।
1: जी धन्यवाद।
3: और दूसरा ये है कि मेरे दो पेशेंट हैं।
1: जी।
3: एक तो ये है कि मेरे पीछे वाले मोलार्स ऊपर और नीचे दोनों में ही कीड़ा लगा है।
1: जी।
3: काला काला।
1: जी।
3: जो बहुत ही क्लियरली ऑब्वियसली विजिबल है सभी को, मगर फिर भी डेंटिस्ट ने मुझे बोला कि जब तक वो आपको ट्रबल ना करें तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो मुझे पूछा था कि क्या उसको ऐसे छोड़ना सेफ है, कहीं वो इधर उधर और तो नहीं हो जाएगा
1: जी
3: इन्फेक्शन। नंबर टू, मेरी आरसीटी, एक डेंटिस्ट ने बोला कि मुझे आरसीटी कराना चाहिए, एक और मोलार है मेरा।
1: ओके।
3: उसमें बहुत ज्यादा मुझे पेन था और वो थोड़ा थोड़ा सा हिलने भी लगा है। एक ने बोला कि आप उसको निकलवा लीजिए और दूसरे ने बोला आप आरसीटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आरसीटी करवा लिया है उसका, मगर अभी भी खाने में मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं है। ऑल्दो पहले के जितना पेन तो उसमें नहीं है, मगर फिर भी वो उतना कंफर्टेबल भी नहीं है खाने में।
1: जी।
3: तो ये पूछा था कि उसका मतलब क्या, हमने ठीक किया उसमें आरसीटी कराकर।
1: जी
2: देखिए, आपका पहला सवाल था कि आपके दांतों में काला काला कीड़ा लग गया है पीछे वाले दांतों में। देखिए काला काला कीड़ा जो है वो कैविटीज ही है कि नहीं है, वो या वो सिर्फ एक स्टेन्स ही हैं। जो ब्लैक दिखता है वो जरूरी नहीं कि कैविटीज ही हैं, अगर उसमें होल है तो उसको हम कैविटीज बोलते हैं। हो सकता है वो कुछ स्टेन्स हो, एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हो, जो आप ठीक से क्लीन नहीं कर पा रहे उसकी वजह से वो ब्लैक हो गए हैं। तो जरूरी नहीं कि वो कैविटीज ही हैं, तो आप एक चेकअप करा सकते हैं कि वो कैविटीज हैं कि नहीं है। तो और दूसरी चीज़ आपने बोला कि वो स्प्रेड ना हो जाए, कैविटीज़ जो है दूसरे दांतों में ना लगे। देखिए इन कैविटीज़ जो है डेंटल कैविटीज़, वो इन्फेक्शियस नहीं होती कि एक दांत से दूसरे दांत को लग गई, या एक साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड में कैविटी लग गई, या एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में कैविटीज़ का इन्फेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डेंटल कैविटीज़ जो है प्लाक की वजह से होती है, जो प्लाक दांतों के आसपास डिपॉजिट हो जाता है, और जब आप मीठा साथ में खाते हैं तो जो बैक्टीरिया है प्लाक में वो शुगर को कन्वर्ट करते हैं एसिड में, और वो एसिड जो है टूथ को डिसॉल्व करता है, एनेमल को डिसॉल्व करता है, जिसकी वजह से उसमें कैविटीज हो जाते हैं। तो मेन है आपको प्लाक को कंट्रोल करना है प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से और डेंटल फ्लॉस करके, तो इस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है डेंटल कैविटीज का। और दूसरा क्वेश्चन बताया कि आपका टूथ में पेन था, उसका रूट कैनाल हो गया है, तो आप जो है अपना चेकअप करवा करके आरसीटी के बाद का एक्सरे करा करके देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके कैपिंग उसमें फुल कवरेज क्राउन उसके ऊपर लगवा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, कैविटी काफ़ी लोगों में एक कॉमन प्रॉब्लम है, और इसकी क्या वजह है और कैसे बचाव कर सकते हैं इससे?

देखिए, डेंटल कैविटीज जो हैं काफ़ी टाइम से हैं लोगों में, ठीक है। तो हमारे जो हैं दो मॉडल होते हैं डेंटिस्ट्री में, एक होता है ऑपरेटिव मॉडल, जो कि मॉडर्न डेंटिस्ट्री जो डॉक्टर जीवी ब्लैक ने सेंचुरीज एगो दिया था कि दिस इज ऑपरेटिव मॉडल, कि कैविटीज हैं उसमें कैविटीज को क्लीन किया उसमें फिल कर दिया, मीन्स ड्रिल एंड फिल, जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री डेट इज बेस्ड ऑन द। तो कैविटीज तो कम नहीं होंगी, जो जिसको कैविटी हो गई है उसको हमने ड्रिल करके फिल कर दिया, तो हमने प्रिवेंशन के लिए तो कुछ किया नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रिवेंटिव मॉडल अपनाया, नॉन ऑपरेटिव केयर दिया उन्होंने पब्लिक में, तो उससे जो है कैविटीज होने से उन्होंने रोका। तो

0: डेट इज बेस्ड ऑन दैट। तो कैविटीज तो कम नहीं होंगी, जो जिसको कैविटी हो गई है उसको हमने ड्रिल करके फिल कर दिया, तो हमने प्रिवेंशन के लिए तो कुछ किया नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रिवेंटिव मॉडल अपनाया, नॉन ऑपरेटिव केयर दिया उन्होंने पब्लिक में, तो उससे जो है कैविटीज होने से उन्होंने रोका का, तो उन वो डेवलप कंट्रीज ने काफी हद तक कैविटीज को कंट्रोल कर लिया है। तो उन्होंने क्या क्या अपनाया तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि वो जो है ब्रश जो है आपको एक तो दिन में दो बार ही करना चाहिए, सुबह और रात को 2 मिनट तक करना चाहिए, और पेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए और कब से शुरू करना चाहिए ब्रश करना। जैसे जो बेबी है न्यू बॉर्न उसका फर्स्ट अपीयर होता है 8 to 10 months ऑफ एज में, तो जैसे ही फर्स्ट टूथ अपीयर हो तो उसको जो है सॉफ्ट बेबी ब्रश से उसको क्लीन करना स्टार्ट करना चाहिए, बिना शक आप बिना टूथपेस्ट के कर सकते हैं, ठीक है। और उस बच्चे का फर्स्ट विजिट टू द डेंटिस्ट शुड बी एट हिज फर्स्ट बर्थडे, मींस 1 ईयर की अराउंड उसको फर्स्ट विजिट आना चाहिए। सेकंड जो न्यूबॉर्न टू लेस देन 18 ईयर जो किड्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उसमें जो ब्रश है बिना पेस्ट के आप कर सकते हैं, बट 18 मंथ टू 6 ईयर तक के जो बच्चे हैं, 6 ईयर तक के बच्चे, उनको जो है किड्स टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसमें कि फ्लोराइड की मात्रा 500 ppm होना चाहिए, और जो 6 ईयर से अबव हैं उनको 1000 ppm एडल्ट टूथपेस्ट फ्लोराइड वाला यूज कर सकते हैं। तो उससे जो है प्रिवेंशन होगा डेंटल कैविटीज का। और सेकंड, ब्रश करना कैसे है, ब्रश करने के अलग अलग टेक्निक होती हैं, जैसे कि हम मोस्ट कॉमनली मॉडिफाइड बास टेक्निक जनरली हम एडवोकेट करते हैं, तो उसमें ये होता है ब्रश के ब्रिसल्स को 45 डिग्री एंगल पे रख करके गम लाइन पर, और उसको वाइब्रेटरी मोशन देना है और उसको फिर डाउन मूव करना है टुवर्ड्स द च्यूइंग सरफेस। तो मॉडिफाइड बास टेक्निक आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आप उसको उसका वीडियो मिल जाएगा कैसे करना चाहिए ब्रश। और इसके अलावा आपको जो 18 मंथ से ऊपर मैंने आपको बताया कि 500 ppm टूथपेस्ट यूज करना है, 6 ईयर ऑनवर्ड्स जो है एडल्ट टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, और ब्रशिंग फ्रिक्वेंसी ट्वाइस डेली करना है, और इसके साथ साथ डेंटल फ्लॉस जरूर करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस है इंटर डेंटल एरिया जो है वो क्लीन करने के लिए होता है, और वो एक थ्रेड की तरह है, वो फिंगर्स पे लगा के सभी दांतों को बीच में से क्लीन करना चाहिए। आजकल जो है एंगुलेटेड फ्लॉस भी आते हैं, हैंडल वाले फ्लॉस जिसको बोलते हैं, राइट एंगल एंगल्ड फ्लॉस, तो उसमें ये है कि हैंडल लगा होता है उसको होल्ड करके आप इंटर डेंटल एरिया को क्लीन कर सकते हैं, उससे कैविटीज की और गम्स की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी। फिर भी आपको रेगुलर एवरी 6 months डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए डेंटल चेकअप के लिए।
1: जी डॉक्टर साहब, इसी बीच में हमारे पास सवाल आ रहे हैं, सरोज मल्होत्रा साकेत मेरठ से लिख रही हैं कि डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे ठीक से ब्रश नहीं करते, क्या करें, अभी आपने जो बताया, और उसके बाद क्या नीम से दांत की का नीम का दातुन करने से बीमारियों से बचाव हो सकता है, और क्या फिटकरी से गार्गल करते रहना ठीक है।
0: देखिए, अगर बच्चे ब्रश नहीं कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को उनको सिखाना है कि कैसे ब्रश करना है, पेरेंट्स मिरर के सामने खड़े होकर पेरेंट्स उनको सिखाएं कि कैसे ब्रश करना है, वो खुद करें और रात को सोने से पहले जरूर ब्रश करें, खुद भी करें बच्चों को भी करवाएं। और दूसरा सवाल था उनका
1: कि फिटकरी से के पानी से क्या गार्गल करने चाहिए।
0: जो बेस्ट माउथ वॉश जो है ना हमारे माउथ के लिए, वो है गुनगुना पानी में हल्का सा नमक डालिए, जो सादा नमक होता है ना बस वही नमक डालिए, और उसको सलाइन बना के, मतलब 0.9% जो होता है, तो जितना आंसुओं में नमक होता है ना उतना नमक आपको पानी कोस से पानी में डालना है, तो उससे जो है रिंस कर सकते हैं आप ब्रश करने के बाद।
1: और एक सवाल था कि नीम का दातुन क्या दांतों के लिए फायदेमंद है।
0: देखिए, हम यहाँ पर साइंटिफिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड, ठीक है। तो हम जो है एज अ डेंटिस्ट, मैं एज अ प्रोफेशनल, मैं तो टूथब्रश एडवाइस करूंगा, सॉफ्ट टूथब्रश करना चाहिए दांतों को क्लीन करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं कॉल लाइन पर, उनका कॉल ले लेते हैं।
0: हाँ जी, जरूर।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
2: मैं हेमलता बात कर रही हूँ दिल्ली से। मेरे दो सवाल हैं डॉक्टर सर से।
1: जी,
2: सबसे पहला सवाल मेरा है कि वैसे टेढ़े मेढ़े दांतों को अगर मुझे ब्रेसेस करवाना है तो उसकी कोई पर्टिकुलर एज होती है या हम कभी भी करवा सकते हैं किसी भी एज में। और अगर हम बड़ी एज में करवाते हैं तो क्या उससे फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि मैंने दांत में ना अपना कैपिंग करवाया था, तो वो 2 साल पहले करवाया था, तो अभी उस जहाँ पे कैपिंग करवाया था जिस दांत में, वो उसमें थोड़ा सा दर्द होता है, कभी कभी होता है और समटाइम बहुत तेज भी होता है, तो क्या मुझे वो कैपिंग चेंज करवानी चाहिए? और एक

0: तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हम लोग दांतों की क्लीनिंग के लिए या उनकी वाइटनिंग के लिए हमें साल में हम कितनी बार उसे करा सकते हैं,
1: जी
0: यही मेरे तीन सवाल है, थैंक यू।
2: देखिए, आपका जो सवाल था कि कैपिंग करी हुई है दांत के ऊपर और कैपिंग की वजह से आपको पेन हो रहा है, देखो कैप जो होता है वो तो आर्टिफिशियल मटेरियल है टूथ के ऊपर, तो उसकी वजह से तो पेन नहीं है। पेन तो है कि क्या आपने उस दांत में आरसीटी कराया था कि नहीं कराया था। जनरली आरसीटी के बाद ही हम कैप एडवाइस करते हैं दांत के ऊपर, और अगर अभी भी आपको पेन हो रहा है तो हो सकता है आपने आरसीटी ना कराया, उसमें कैविटी हो जो नीचे नर्व को टच कर रही है, उसकी वजह से पेन हो सकता है। और दूसरा, अगर आप ठीक से इंटरडेंट कैप के साथ इंटरडेंटल एरिया में क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं डेंटल फ्लॉस से या इंटरडेंटल ब्रश से, तो वहाँ पर गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी माइल्ड पेन हो जाता है। तो आप अपने घर के पास जो भी डेंटिस्ट हैं, आप उनको उनके पास चेकअप कराइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए।
1: सर, इनका सवाल था कि क्या टेढ़े मेढ़े दांत को ठीक कराने की कोई उम्र है या किसी भी उम्र में कराए जा सकते हैं?
2: देखिए, अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो जितना जल्दी कराएंगे उतना ईजिली हो जाएंगे, और जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो जल्दी से जल्दी आपको कराना चाहिए इसका।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और सवाल आया है व्हाट्सएप पे। सुनील कुमार विश्वकर्मा लखनऊ से पूछ रहे हैं, क्या टूथपेस्ट के स्थान पर दंत मंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है? इनकी उम्र 52 वर्ष है और ज़्यादातर दांत इनके घिस चुके हैं, ऐसा लिखा है इन्होंने।
2: देखिए, जो मंजन जिसको हम टूथ पाउडर कहते हैं, वो जो है एब्रेसिव होता है, वो दांत को घिस देता है। आप खुद ही कह रहे हैं कि दांत घिस गए हैं, वो दांत घिस ही इसलिए गए हैं कि आप पाउडर यूज कर रहे हैं। तो हम पाउडर नहीं एडवाइस करते हैं यूज करने के लिए, टूथ पेस्ट यूज करना चाहिए, फ्लोराइड वाला टूथ पेस्ट जिसमें कि एडल्ट में एटलीस्ट 1000 mg/ppm 1000 ppm का फ्लोराइड होना चाहिए, तो पेस्ट यूज करना चाहिए।
1: जी जी जी। दिनेश कुमार भंडारी हमें नेपाल से लिख रहे हैं कि उनकी उम्र 37 साल है और जो उनके दांत हैं गम से खून निकलता है, क्या समस्या है ये इन्हें बताएं प्लीज।
2: अगर आपको कोई जनरल बीमारी या सिस्टेमिक बीमारी नहीं है तो उसका जो मेन रीजन जो होता है गम्स में से ब्लीडिंग का, वो लोकल फैक्टर जो कि प्लाक जो गम्स के आसपास डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जिंजिवाइटिस या पेरिडोंटाइटिस हो जाता है, तो ब्लीडिंग होती है ब्रश करते टाइम, कई बार अपने आप भी होना शुरू हो जाता है ब्लीडिंग। तो उसका मैंने पहले भी बताया कि आपको ओरल हाइजीन जो है ठीक रखना है, ब्रशिंग ट्वाइस करना है, जिस टेक्निक से बताया वैसे करना है, और सॉफ्ट ब्रश यूज करें, और इंटरडेंटल ब्रश या फिर डेंटल फ्लॉस करके प्लाक को कंट्रोल करें। अगर आपके दांतों के आसपास टार्टर डिपॉजिट हो गया है जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, तो उसका आपको प्रोफेशनल स्केलिंग एंड क्लीनिंग करा करके एक बार कराना होगा, उसके बाद उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं दांतों को।
1: जी डॉक्टर साहब, अंगद यादव आजमगढ़ यूपी से हमें लिख रहे हैं कि इनका 5 साल का बच्चा है जिसके ऊपर के दांत काले दिखाई दे रहे हैं और सामने के दांत जो हैं आधे आधे गल गए हैं। बच्चा रात में रोता है और उसको दर्द की शिकायत रहती है। डॉक्टर के पास ये गए थे और उन्होंने बोला है कि बच्चा छोटा है, दांत का दर्द नहीं, उसे किसी तरह की और वजह से दर्द हो रहा है। बच्चे के का दांत जो है वो भी दूध का दांत है, क्या करें?
2: देखिए, 5 साल की उम्र है तो दांत तो उसके दूध के ही हैं, डेसिडुअस टीथ जिसको हम कहते हैं। तो अगर उसके दांत काले हो गए हैं, या तो उसमें कैविटीज हो गई हैं, या फिर उसको कभी चोट लगी होगी जिसकी वजह से वो डेड हो गए हैं दांत, उसकी वजह से भी काले हो जाते हैं। तो अगर उसको उसमें दर्द हो रहा है तो आपको चेकअप ही कराना पड़ेगा, तो क्या दांतों की वजह से है या नहीं है, अगर है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कराना होगा, यही है इसका।
1: सर, हम अभी बात कर रहे थे दांतों की, अब मैं बात आपसे करूंगी मुंह से जुड़े स्वास्थ्य की। एक बेहद कॉमन प्रॉब्लम है मुंह से दुर्गंध आना, ये समस्या कई बार उन लोगों को भी परेशान करती है जो अच्छे से ब्रश करने के साथ साथ टंग क्लीनिंग पर भी ध्यान देते हैं, इसका कारण क्या है?
2: देखिए, मुंह से स्मेल आना जैसे हेलिटोसिस हम कहते हैं, वो मोस्ट कॉमनली तो गम्स की प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से होती है। जैसे आपने बोला कि ब्रश करते हैं, तो ये नहीं बताया आपने कि फ्लॉस भी करते हैं। मैं बार बार एडवोकेट कर रहा हूँ कि ब्रश भी करना है, फ्लॉस भी करना है, डेंटल फ्लॉस जो एक धागे की तरह होता है वो सभी को डेली करना चाहिए फ्लॉस। तो फ्लॉस आप साथ में करिए, इंटरडेंटल एरिया क्लीन रहेगा तो उसकी वजह से स्मेल नहीं आएगी। अगर ये तो है लोकल फैक्टर जो गम्स की वजह से हो जाता है, या कुछ कैविटीज हैं आपके दांतों में बहुत बड़ी बड़ी जिसके अंदर के फूड डेब्रिज रह जाते हैं, क्लीन नहीं हो पाते, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो वो फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, तो कैविटीज की वजह से

0: हो सकती है। तो अगर आपका ओरल हाइजीन पहले चेकअप कराइए, अगर सब ठीक है तो उसका कुछ सिस्टेमिक कारण भी हो सकता है। अगर कुछ आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हेलिटोसिस हो जाती है, या ENT की जैसे पैरानेजल साइनसिस में कुछ साइनोसाइटिस है उसकी स्मेल भी इसी तरह माउथ के करीब आती है, तो इस तरह से हो सकती है।
1: जी, मुंह के अंदर दुर्गंध आने का कारण हमारा पाचन तंत्र भी हो सकता है, पेट से जुड़ी परेशानियां। डॉक्टर साहब, टंग क्लीनिंग जो है वो एक ओरल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ सर ये भी बताइए कि मुंह में छाले हो जाना जो कई बार एक बड़ी समस्या बन जाता है, खासकर गर्मी के सीजन में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह है? क्या ये छाले ही अल्सर है या कुछ और कैसे इनका निदान किया जा सकता है?
0: देखिए, टंग क्लीनिंग तो जरूर करना चाहिए। जब हम ब्रश करते हैं सभी, तो उसी ब्रश से आप टंग को भी क्लीन कर सकते हैं। तो टंग जो है नॉर्मली पिंक कलर का होता है, तो ऐसे उसके ऊपर कुछ डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए, ब्लैक या व्हाइट कलर का, तो अगर कुछ है तो उसका चेकअप होना चाहिए। तो सेकंड सवाल था आपका कि मुंह में छाले हो जाते हैं। देखिए, छाले तो बहुत तरह के मुंह में हो जाते हैं। बहुत कॉमन जो है वो तो है एप्थस अल्सर होते हैं, वो जनरली होते हैं स्ट्रेस की वजह से, या नींद ना पूरी हो उसकी वजह से, या कुछ कई बार क्या होता है कि जैसे फीवर हुआ तो उसकी वजह से ब्लिस्टर्स हो जाते हैं मुंह के अंदर या लिप्स के पर। तो ब्लिस्टर जब रप्चर होते हैं तो वो जो है वायरल हर्पिस इन्फेक्शन की वजह से भी जो है छाले हो जाते हैं। और इसके अलावा कोई दांत कहीं शार्प है या कोई कैक आर्टिफिशियल क्राउन लगा हुआ है वो शार्प है, उसके ट्रोमा रेगुलर ट्रोमा की वजह से भी मुंह में अल्सर हो जाते हैं। और कुछ लोगों को जो है हैबिट होती है टोबैको खाने की या स्मोकिंग की, तो उनमें भी अल्सर हो जाता है। तो अगर कोई भी अल्सर, किसी भी तरह का अल्सर है, 2 से 3 हफ्ते की अगर उसकी हिस्ट्री है तो उसका बायोप्सी इज मस्ट, वो मैंडेटरी है कि उसका बायोप्सी होना चाहिए। अब सेल्फ मेडिकेशन या एक खाली मेडिकेशन से ट्रीटमेंट नहीं होगा, बायोप्सी से रूल आउट करना है कि कहीं इसके अंदर कोई कैंसर की शुरुआत नहीं हो गई है। तो इसलिए जो है,
1: क्या ये ओरल कैंसर से भी सर रिलेट करता है?
0: हाँ जी बिल्कुल, कोई कुछ रेड फ्लैग फीचर्स होते हैं अल्सर के अंदर। वही मैंने स्टार्ट किया था कि अगर 2 to 3 weeks से ज़्यादा कोई भी अल्सर है तो उसकी बायोप्सी होना चाहिए। अगर कोई अल्सर जो है, अगर हम उसको फील करें और वो रफ फील हो रहा है, फर्म फील हो रहा है, थिक फील हो रहा है, तो वो एक रेड फ्लैग फीचर है कि वो कन्वर्ट हो सकता है कैंसर की तरफ, उसमें हो सकता है। इसके अलावा अल्सर के साथ साथ अगर जॉ बोन के नीचे या मुंह के आसपास कोई स्वेलिंग हो रही है, कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो उस वो भी एक फीचर है, रेड फ्लैग फीचर जिसको कि हम बोलते हैं। अगर पेशेंट को जीरोस्टोमिया है, ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर और साथ में अल्सर है, तो वो भी एक रेड फ्लैग फीचर है, उसमें कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अल्सर्स अलग अलग तरह के होते हैं, वो एक स्पेशलिस्ट को दिखा करके आप चेकअप कराइए और ट्रीटमेंट लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम से नहीं होता तो उसका बायोप्सी करा करके उसका डायग्नोसिस होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं, ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार,
2: कैसे हैं आप?
1: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
2: मैं अच्छा हूँ। मैं आपका प्रोग्राम से प्रोग्राम का दिल से चाहता हूँ।
1: जी जी,
2: और डॉक्टर साहब का भी शुक्र अपने दिल से करना चाहता हूँ।
1: जी जी, आप सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: मेरा सवाल ये है जी, मेरा जारदात एक जार मेरी फूट रही है और वो कभी खींच जाती है कभी बंद हो जाती है, और मेरा जारदात कभी खींच जाता है कभी बंद हो जाता है, ठंडा गर्म लगता है
1: जी,
2: कौन सा बरतना चाहिए जी?
1: जी जी,
2: सवाल है जी।
1: जी आपने सवाल इनका सुन लिया डॉक्टर साहब, इनकी दाढ़ की शायद प्रॉब्लम है।
0: हाँ, ये बोल रहे हैं कि सेंसिटिविटी होती है, तो हमने नॉर्मली देखा है कई पेशेंट्स या जनरल पब्लिक जो है, कभी भी सेंसिटिविटी होती है तो वो टेलीविजन पे या रेडियो पे एक एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं कि सेंसिटिव पेस्ट लगा स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें जो है ऐसे टीवी पर या कहीं एडवर्टाइजमेंट देख करके सेंसिटिव पेस्ट अप्लाई करना नहीं शुरू कर देना चाहिए। तो आपको अगर सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी के बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे कि दांत घिस गए हैं या दांत कहीं से क्रैक हो गया है, दांतों में कैविटीज हो गई हैं, गम्स नीचे चले गए हैं दांतों को छोड़ करके, रूट्स एक्सपोज हो गई हैं, उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है। तो कई कारण है, टूथ क्रैक हो गया है उसकी वजह से हो सकता है। तो पहले तो डायग्नोसिस होना चाहिए कि सेंसिटिविटी हो क्यों रहा है। अपने आप जो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, ओवर द काउंटर जाके सेंसिटिव पेस्ट नहीं लगाना चाहिए, और जो है आप डेंटल चेकअप कराइए और जो भी उसका डायग्नोसिस है फॉर उसका फिर ट्रीटमेंट होना चाहिए।
1: जी, प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीजेस पर आज हमें बहुत बेहद खास जानकारियां मिली।

0: आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात कर रहे हैं दांतों और मौखिक स्वच्छता से जुड़े खास विषय पर। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं TMJ की, तो ये किस तरह की बीमारी है और इसके होने के कारण क्या है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है?
1: TMJ, उसको जैसे कि टेम्परो मैंडिबुलर ज्वाइंट कहते हैं, वो एक जॉ बोन का ज्वाइंट है। जैसे नी ज्वाइंट होता है, एल्बो ज्वाइंट होता है, ऐसे जॉ का भी एक ज्वाइंट है, इसको TMJ बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो डिसीजेज हैं उसको हम टेम्परो मैंडिबुलर डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो जनरली ये होता है, इस पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो उनको ये बोलते हैं कि उनको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जॉ मूवमेंट में। सुबह उठते हैं तो उनको जॉ मूवमेंट करते टाइम पेन स्टार्ट होता है। पेन जो है माइल्ड टू मॉडरेट होता है और वो कान के आसपास या जॉ में या कान के ऊपर या कान के बैक साइड में कई बार नेक तक पेन हो जाता है। तो वो TMJ की वजह से हो सकता है, तो उसका चेकअप कराना चाहिए। तो जनरली उसका हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि आजकल हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें स्ट्रेस बहुत होता है, स्ट्रेस लेवल, और स्ट्रेस की वजह से वो सारा दिन जो है अपने जॉ को क्लिंच करते रहते हैं और कई बार तो अनकॉन्शियसली सोने के बाद भी वो जॉ को क्लिक करते रहते हैं, जॉ को ग्राइंड करते रहते हैं, टीथ को ग्राइंड करते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो मसल्स हैं जॉ की, वो जो है स्ट्रेस में आ जाती हैं, स्पाजम में चली जाती हैं। तो उसकी वजह से जॉ में स्टिफनेस हो जाता है, तो फिर मॉर्निंग में पेन करता है। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना यह है कि सबसे पहले तो स्ट्रेस रिलीव करना है कि स्ट्रेस को कैसे रिलीव किया जाए। चाहे आप योगा करके करिए, चाहे एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, तो स्ट्रेस को रिलीव करना है। इसके साथ साथ स्ट्रेस के अलावा सेकंड रीज़न जो नॉर्मली टेम्परोमेंटलर ज्वाइंट डिसऑर्डर्स का होता है वो स्लीप अगर प्रॉपर ना ली जाए, नींद पूरी नहीं हो रही है स्ट्रेस की वजह से, तो जैसे हम एडवाइस करते हैं 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, उसी तरह TMJ के लिए भी 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो मैं एक एडवाइस करूँगा, स्लीप हाइजीन फॉलो करना चाहिए, स्लीप हाइजीन। तो उसमें यह है कि कोई भी इंसान, उसको जो है एक कांस्टेंट टाइम पर सोना चाहिए और कांस्टेंट टाइम पर उठना चाहिए, सेम टाइम पर। जैसे रात को अगर 9 बजे 10 बजे सो रहे हैं तो

0: उसी टाइम ही सोएं और उसे सुबह 5-6 बजे उठ रहे हैं तो उसी टाइम ही उठना चाहिए
1: जी।
0: और दोपहर का या दिन में अगर सोने का टाइम है तो वो उसको लिमिटेड रखें कम से कम, और रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल और स्क्रीन टेलीविजन जो है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए
1: जी।
0: और जहां आपको सोना है वहां पर आपको नॉइज कम कर देनी चाहिए, नॉइज नहीं आना चाहिए, लाइट डिम कर देनी चाहिए। और कैफीन को दोपहर के बाद नहीं लेना चाहिए, कैफीन मीन चाय कॉफी जैसे ड्रिंक्स लेते हैं वो शाम को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो उसका क्योंकि इफेक्ट रहता है कि नींद नहीं आएगी फिर आपको। और रात के टाइम खाना जो है लाइट खाना चाहिए, और जनरली 2 to 3 hours बिफोर बेड डिनर हो जाना चाहिए, और डेली आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसकी वजह से आपको नींद प्रॉपर आएगी, स्ट्रेस नहीं होगा, तो आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण यही है, इसके अलावा और भी कारण होते हैं वो आपको डेंटल चेकअप कराएंगे तो फिर पता चलेगा।
1: डॉक्टर साहब आपने स्लीप हाइजीन पर इतनी गहरी हमें अच्छी जानकारी दी, तो इसका मतलब तो ये है कि जो हम अपनी दिनचर्या है अगर उसको अच्छा रखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा
0: आपके हेल्थ के लिए, जनरल हेल्थ के लिए भी ये सब अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर साहब आपने टीएमजी की बात करी, जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें लिखती है, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर टीएमजी डिसफंक्शन एंड व्हाट इज द बेस्ट क्योर फॉर दिस?
0: रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, समटाइम्स देयर इज मेल ऑक्लूजन और डिफेक्टिव रेस्टोरेशन, और इफ देयर इज आर्टिफिशियल टीथ ऑक्लूजन इज नॉट देयर प्रॉपर, सो दैट ऑल कैन कॉज टीएमजी डिसऑर्डर। सो ट्रीटमेंट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, स्ट्रेस शुड बी रिलीव्ड एंड प्रॉपर स्लीप शुड बी टेकन।
1: डॉक्टर साहब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब बात उनकी कर लेते हैं जो डेंचर का इस्तेमाल करते हैं, उनकी ओरल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है और डेंचर्स के टाइप क्या हैं, क्या इसको लगाने के बाद मुंह की सफाई यानी हाइजीन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं?
0: बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, जैसे कि अभी हमने स्लीप हाइजीन की बात की ऐसे ही हम अब डेंचर हाइजीन की बात करना बहुत जरूरी है फॉर द डेंटिस्ट, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आर्टिफिशियल डेंचर पहनते हैं, जैसे कि कंप्लीट डेंचर अपर लोअर है या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है या फिक्स पार्शियल डेंचर है, कुछ लोग इम्प्लांट्स लगाते हैं उसके ऊपर क्राउन लगा होता है, तो इनका हाइजीन मेंटेन कर, जो तो फिक्स्ड है उसको तो आपको डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रश करके आपको जो है उसको क्लीन रखना है, और जो रिमूवेबल डेंचर है उसको जो है आपको रेगुलर क्लीन करना है, और रात को सोते टाइम तो उसको उतार करके एक डेजिग्नेटेड जो कंटेनर है रखने के लिए आपने रखा हुआ हो उसके अंदर रखना चाहिए, ताकि गम्स जो है दांतों के नीचे गम्स हैं उनको जो है रेस्ट मिले। और डेंचर हाइजीन के लिए मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिशनली जो था वो ये है कि वेट स्टोरेज, डेंचर को जो है पानी में रखा जाता है ताकि वो जो है उसका जो मटेरियल है वो डैमेज ना हो, या मीन उसमें कोई चेंजेस ना आए, तो उसको क्लीन जो है कि वो कैसे करना है, जैसे ही आपने डेंचर उतारा उसको सबसे पहले तो उसको वाटर से क्लीन करना है, एक सॉफ्ट ब्रश लेना है, उसके साथ जो भी फूड डेब्रीज हैं उसके ऊपर उसको क्लीन करना है, तो डेंचर को टूथपेस्ट के साथ नहीं, क्योंकि उसके अंदर एब्रेसिव होता है तो उसके साथ नहीं करना चाहिए, अब नॉर्मल सा एक सोप सोल्यूशन बना करके तो उससे आप क्लीन कर सकते हैं डेंचर को, बट अगर उसमें कोई स्टेन्स हो रहे हैं दांतों के ऊपर या कोई स्मेल आ रही है या किसी तरह से, तो उसके लिए डेंचर क्लींजिंग टैबलेट्स आते हैं, ठीक है, तो वो उसमें बॉक्स में डाल करके उसको कुछ घंटे के लिए उसके अंदर छोड़ सकते हैं, क्योंकि टैबलेट्स के अंदर वाटर में डालने से एफर्वेसेंट्स आते हैं, उसमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट होते हैं और बफर होता है जो कि उसको डिसॉल्व करता है उसके अंदर जो भी डेब्रीज हैं उसको क्लीन करने के लिए। इसके अलावा अगर टैबलेट्स नहीं है तो विनेगर जो होता है, एसिटिक एसिड होता है, उसको डाइल्यूट करके 1:4 वाटर से डाइल्यूट करके तो उसके अंदर हम कुछ घंटे के लिए या ओवरनाइट रख सकते हैं, बट उसको थॉरोली रिंस कर लेना चाहिए सुबह उठ करके अच्छे से बिफोर यू पुट इन द माउथ, तो उसको क्लीन करना है। और इसके अलावा जो आजकल जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, तो आजकल जो डेंचर बन रहे हैं वो बहुत अच्छे मटेरियल से बन रहे हैं, एक्रेलिक जो है अच्छी क्वालिटी का है, तो उसमें डिस्टोर्शन नहीं होता, तो अभी जो एडवोकेट करते हैं कि डेंचर को जो है अब उतारने के बाद वॉश करके क्लीन करके ड्राई करके आप ड्राई कंटेनर में रखिए, क्योंकि वो उसमें श्रिंकेज के चांसेस नहीं हैं, वो डैमेज नहीं होगा, तो अगर गुड मटेरियल का है तो उसको आप ड्राई स्टोरेज भी कर सकते हैं, तो ड्राई स्टोरेज का फायदा यह है कि उसके अंदर जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा।

0: उसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो नहीं करेंगे, तो उसमें चांसेस ऑफ कैंडिडाइसिस नहीं होंगे पेशेंट को, तो ड्राई स्टोरेज कर सकते हैं। बट जैसे कि आपको डेंटिस्ट ने या मैन्युफैक्चरर ने आपको रेकमेंड किया है आपका मटेरियल कैसा है उसको फॉलो करें, ठीक है। और डेंचर से एसोसिएटेड पेशेंट को जो है कैंडिडाइसिस, मुंह के अंदर सफ़ेद निशान हो जाते हैं, मतलब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो डेंचर जो है क्लीन करना चाहिए प्रॉपरली। और एंगुलर कैलाइटिस जिसको बोलते हैं कि माउथ के कॉर्नर पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ पर बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, उसका मेन कारण तो होता है कि आपका जो डेंचर है अगर वो लूज हो गया है या फिर उसकी हाइट कम बनी है तो उसके माउथ कॉर्नर पे जो है फोल्ड होना शुरू हो जाता है, तो वहां पर एंगुलर कैलाइटिस हो जाता है। तो डेंचर की हाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, अगर डेंचर स्टेबल है और वो उसमें हिलता नहीं है, लूज नहीं है, तो फिर वो डेंचर एंगुलर कैलाइटिस और कैंडिडाइसिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं ब्रेसिस जो इस्तेमाल करते हैं उनकी, और जिनके दांतों में ब्रेसिस लगे हैं उनको दांतों की सफाई उनके लिए एक बड़ी समस्या होती है, ऐसे में कैसे दांतों की सफाई के साथ ओरल हेल्थ को भी बेहतर रखा जाए?
0: देखिए ब्रेसेस जो है दो तरह के आते हैं, एक तो रिमूवेबल ब्रेसेस होते हैं और फिक्स्ड ब्रेसेस होते हैं। रिमूवेबल को तो आपको रोज मतलब निकाल करके उसको वैसे ही क्लीन करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है, रिमूवेबल ब्रेसेस को ब्रश से सोप सॉल्यूशन से क्लीन करना है। इसके अलावा जो फिक्स्ड ब्रेसेस हैं जिसको कि हम नहीं पेशेंट अपने आप नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए उसके लिए स्पेशल ब्रश आते हैं, ऑर्थो ब्रश नाम से ब्रश आते हैं, तो उससे जो है क्लीन हाइजीन क्लीन रखना है। इंटरडेंटल ब्रश यूज करके आप उसको एरियाज को क्लीन रख सकते हैं, तो कहीं पे फूड डेब्रिज या प्लाक डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो अगर प्लाक रहेगा तो उससे टीथ में लूज होने के और ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट फेल होने के चांसेस रहेंगे, तो हाइजीन इंप्रूव करके रखना बहुत जरूरी है ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट के अंदर भी।
1: जी जी डॉक्टर साहब, सागर हमें विजयपुरा कर्नाटका से लिख रहे हैं कि व्हाट ओरल रूटीन वी कैन फॉलो टू कीप आवर टीथ एंड ओवरऑल ओरल हेल्थ इन गुड कंडीशन। और हमारा भी आपसे यही सवाल है कि अब कार्यक्रम में समय बहुत कम रह गया है, तो कैसे अपने दांतों और अपने जो मुंह के स्वास्थ्य को हम अच्छे से रख सकते हैं, इसके लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं?
0: देखिए सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कॉर्पोरेशन से सप्लाई आते हैं उसमें 1% फ्लोराइड होता है, 1 ppm फ्लोराइड होना चाहिए। तो कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेशन एक वन मेथड है जिससे कि कैविटीज को, दांतों की कैविटीज सड़न को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा स्कूल लेवल पर एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए कि ब्रशिंग टेक्निक कैसे करना चाहिए, फ्लॉस कैसे करना चाहिए। आजकल तो बुक्स में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक्स में भी अवेलेबल है कि ब्रशिंग और फ्लॉसिंग कैसे करना चाहिए। और इसके अलावा डेंटल फ्लॉस, इंटरडेंटल ब्रश मैंने आपको बता ही दिया, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कोई भी टूथपेस्ट उठा करके या पाउडर से या ऐसे जो एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। एडल्ट में एटलीस्ट 1000 ppm, चाइल्ड में बिलो 6 ईयर 500 ppm टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। और टूथपेस्ट जब ब्रश किया टूथपेस्ट के साथ तो आपको स्पिट करना है 10 मिनट तक, पानी से रिंस नहीं करना, ताकि जो पेस्ट का इफेक्ट है दांतों के ऊपर वो रहना चाहिए। तो स्पिट करें ब्रश करने के बाद 10 मिनट तक, पानी से रिंस नहीं करें, 10 मिनट के बाद आप रिंस करिए। इसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशन होती हैं कि आप जो है शुगर का कंजम्पशन मींस मीठे का जो है कम से कम रखें, स्टिकी और एसिडिक फूड,
1: और खासकर रात में,
0: खासकर रात में बिल्कुल, और स्टिकी फूड जो है जो दांतों पे चिपके रह जाते हैं उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। एसिडिक फूड जैसे कि लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोलास पीते हैं तो उसको जो है अवॉइड करना चाहिए। और
1: सर अगर कभी स्टिकी फूड लेते भी हैं तो उसके बाद हमें एकदम ब्रश करना,
0: हाँ,
1: या
0: बाद बिल्कुल उसके बाद तुरंत बाद ब्रश कर लेना चाहिए। और जैसे कुछ बच्चों को जो है टॉफीज या चॉकलेट्स रेगुलर नहीं देना चाहिए, उनको ओकेजनली कभी बर्थडे पे या दे सकते हैं, तो उस टाइम आप उसी टाइम जो है साथ में ब्रश जो है वो कर लेना चाहिए। और एवरी 6 मंथ जो है डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। और बच्चों में जो है पिट एंड फिशर सीलेंट्स होते हैं, तो वो हम एडवाइस करते हैं कि अगर पिट एंड फिशर्स हैं उनको, प्रोन है कैविटीज के, तो सीलेंट्स लगा करके कैविटीज को होने से रोक सकते हैं, डेट इज प्रिवेंटिव मेजर। इसके अलावा हम जो जैसे कि व्हाइट स्पॉट लीजन्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैविटीज जो स्टार्ट होती है व्हाइट स्पॉट रीजन से स्टार्ट

0: होते हैं, अगर वहीं पर हम कैविटी फ्लोराइड वार्निश या फ्लोराइड जेल अप्लाई करते हैं तो वो केरीज जो है कैविटीज में कन्वर्ट होने से रुक जाती है। और अगर फिर भी आपको शुगर लेना ही है तो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं, नेचुरल स्वीटनर आते हैं, जैसे स्टीविया है, वो नेचुरल प्रोडक्ट है, वो मीठा है बट उसके अंदर शुगर नहीं है, तो आप चाय में या दूध में।
1: और उसके अलावा सर हम फ्रूट्स भी तो ले सकते हैं जिनसे हमें नेचुरल स्वीटनेस मिलती है, जो
0: नेचुरल फ्रूट आप खा सकते हैं, बट उसमें भी कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, तो फिर भी आपको उसके बाद भी ब्रश तो करना ही करना चाहिए।
1: हाँ जी। तो साथियों ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो था प्रिवेंशन फॉर डेंटल एंड ओरल डिजीज से जुड़ा, जिसमें हमने जाना कि कैसे रखें अपने मुंह के स्वास्थ्य को और दांतों के स्वास्थ्य को बेहतर, और इस पर में बेहद खास जानकारी दी डॉक्टर हरमीत सिंह जी ने, जो है डेंटल स्टाफ सर्जन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी खास जानकारी हमें दी। और इसके साथ आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकेंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड हैं मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूँ। और ये एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठकर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुँचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफ़र से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटर

0: सिक्योरिटी की रीढ़ है सीआरपीएफ। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे बीएसएफ इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, आईटीबीपी इंडो टिबेट बॉर्डर पर है, सीआईएसएफ वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो सीआरपीएफ ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक सीआरपीएफ ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज सीआरपीएफ ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो जिस तरीके का सीआरपीएफ ने काम किया है। और ऐसा वहीं नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो सीआरपीएफ को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि सीआरपीएफ सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है।
1: जी, होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868107070। इस जादुई नंबर के माध्यम से तुरंत आप हम तक पहुँचते हैं। तो इस कार्यक्रम संबंधी आपके मन में जो भी विचार हैं भेजिए ज़रूर।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यूर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, MBA इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप CRPF ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली CRPF। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये CRPF ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था वर्दी की तरफ, एक अट्रैक्शन था। बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड आपको कई बार लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था। बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाय साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया। सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक।
0: आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप CRPF ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, CRPF भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
1: मैं बहुत भाग्यशाली था, मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे, तो वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी। तो उस ज़माने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोज़गार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है, और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें आप अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा, वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं।
1: 2004 तक ये एग्जामिनेशन CPOs कंडक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से UPSC ने ले लिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्ज़ाम निकालती हैं। तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाय फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू, आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो। तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और UPSC की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा, तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं, आज की डेट में बहुत आसान है।
0: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF?
1: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो

0: पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी. सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स ऑल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस.
1: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता
0: है? इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होती है. बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है. और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है, उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं. तो एंट्री लेवल है जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं.
1: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
0: मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था, एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी. तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे. तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फ़ोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई. और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात. तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे, और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था मेरे बैंक में. सारे बहुत खुश हुए क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए. तो ऑफकोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया.
1: वाह, क्या बात है. घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकार का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं. जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए. जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
0: निसंदेह है, बहुत खुशी के भाव थे. मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो. और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ, देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे. तो निसंदेह माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे, और ऑफकोर्स मैं भी काफ़ी खुश था.
1: जी, निश्चित रूप से जब आपको रास्तों चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, ऐसे सुखद बात और कुछ हो नहीं सकती. क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति, जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज़्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा, ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है. अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस प्रकार के बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
0: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने. ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था. मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था. खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट उन दिनों आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था. तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में. वो आपको, आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं. आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट, एक अलग अलग अलग तरीके

0: का निखर कर आता है। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था वो मुझे बहुत हैंडी रहा। सीआरपीएफ में भी यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
1: अपने
0: हाँ बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो। तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है वो अद्वितीय है, वो अनुपम है।
1: जी, तो सीआरपीएफ तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद सीआरपीएफ में रहते हुए यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
0: जी,
1: तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आतुर हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे यूथ या देश के वो सैनिक जिस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का, हर सैनिक का। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल। और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा

0: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल। और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी ज़बान ही सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज़्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आपसे मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और जान लें, तो हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें CRPF के बारे में।
1: CRPF हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस CRPF की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में CRPF ने लड़ाई लड़ी थी और उसमें हमारे CRPF के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर CRPF की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है CRPF में। CRPF ने इन तीनों थिएटर्स, जम्मू कश्मीर, LWE थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो CRPF का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, CRPF अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो CRPF एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो CRPF उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे। और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो CRPF के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। CRPF एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। CRPF को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। CRPF को 1 अशोक चक्रा, 10 कीर्ति चक्रा, 39 शौर्य चक्रा, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, CRPF के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है वो गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि CRPF को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती हैं।
0: जी निश्चित ही, आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं CRPF ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हो, कौन कौन से गेम्स हैं?
1: देखिए CRPF में अब हमारा चूंकि मूवमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका

0: फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफ़ी पॉपुलर गेम है जो आपस में टग ऑफ वॉर, रस्सा कसी का जो गेम होता है वो, उससे काफ़ी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
1: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की भावना।
0: क्या बात है।
1: तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन CRPF में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको CRPF ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो CRPF का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पिनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
0: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
1: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी। और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उसमें बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा। और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा CRPF की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और CRPF ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें CRPF की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था। और CRPF ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी, तो ऑफकोर्स बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
0: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
1: जम्मू कश्मीर

0: मैं दो मौक़ों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफ़र डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और सीआरपीएफ ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो सीआरपीएफ का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो सीआरपीएफ आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी सीआरपीएफ के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो सीआरपीएफ एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते ना होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है, और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल वासिंदे हैं, उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
1: वाह, क्या बात।
0: तो एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और दो मौक़ों पे मैं गया, 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया। तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: वाह, क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियाँ दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअल लीव और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है, आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है, और आप उसको जीते हैं, और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है।
1: जी, एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है, मुझे ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज़्यादा स्थापित कर सके? तो क्या आपकी किसी, ये कहूँगी कि जो आपने सोचा हुआ था, आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने, उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा इंडियन IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे, क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं सीआरपीएफ का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ, जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का मौका मिला।
1: बात है, 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित थे।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको, उनसे बातचीत करने का मौका मिला था, उनके अधिकारियों से स्टूडियोज, लेकिन आज स्टूडियो में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप

0: रहते थे, और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं। हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है, और वो है देश प्रेम।
1: देश
0: अच्छा, अब जब आप CRPF में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है, ना केवल CRPF का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जिसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे। तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे, मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ? कैसा होता था आपके साथ?
1: निसंदेह
0: होता है
1: निसंदेह ये होता था एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो जिससे आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब हो सकता हो, वो ना करें। तो आप देश निर्माण का जो की भावना अपने मन में रखें और अवेयर रहें, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और एक अच्छा मिक्स, एक सर्वांगीण विकास अगर आपका है, आपका शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप ये बन सकते हैं। तो युवाओं को मैं उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था। और CRPF भी जहाँ कश्मीर में काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, तो हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए। तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का CRPF के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के। CRPF ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है। आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो CRPF का है, और CRPF लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है। और मैं इसलिए CRPF मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
0: वाह, क्या बात है। जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक, इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है। क्या ऐसा होता है?
1: बिल्कुल, रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में। एक ना बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड, तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
0: जी।
1: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन कर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
0: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जब आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत। बिल्कुल, वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले, और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवा आज तक कायम है, क्योंकि रोज़ जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो वही पहली मोहब्बत सा आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत सा आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं, और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज़ के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुँचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी ज़िंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं, ऐसे में उनका योगदान

0: बहुत ज्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का, उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रैवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है पीछे, मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियां मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है तो एक, मैं इस मामले में अगेन मैं काफ़ी काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य से आपने बैठा लिया, और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी ज़िंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं, जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
2: तो
0: हाँ जी
1: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। और मेरी जो मेमोरीज हैं वो FM रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिना का गीत माला लेकर आते थे। और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतज़ार करते थे, और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतजार करते थे जब वो बिना का गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे। क्या गोल्डन वॉइस थी उनकी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सारी यादें थी, और आज वो सारी यादें ताज़ा हो गई। और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं FM रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का, इस मौके के लिए।
0: बिल्कुल। और ये जो सफ़र है ये बहुत ही सुखद सफ़र है। हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप, खासतौर पर वो जो CRPF ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द मैं बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानो जो जोर लगाता है।

0: पत्थर पानी बन जाता है। तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने,
1: बिल्कुल
0: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें, और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी।
1: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से, कि आप अपने बच्चों को ना खेल में ज़रूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल। तो अपने बच्चों को ज़रूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है,
0: निसंदेह।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है। निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो, या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर।
0: धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद,
1: जय हिंद।

सूरज सिखा गया मुझे, हाँ दिन के बाद उड़ना है मुझे, थक जाऊं चाहे जितना भी सफर में, फिर भी हिम्मत से बढ़ना है मुझे। कितनी प्यारी गल है ना कि दिन चाहे गुजर गया लेकिन साडे अंदर दी जिहड़ी चिंगारी है ना, जिहड़ी अग है, जिहड़ी सानू कहंदी है कि नहीं तू रुकना नहीं है, तू हर दिन अग्गे वधना है, भावें तेरे राह दे विच जिन्ने मर्जी रोड़े आन, भावें जिन्नी मर्जी रुकावट आन, लेकिन तू झुकना नहीं है, तू रुकना नहीं है। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ 'ਤੇ।

0: रीमा सोलर पैनल लगा ले, सोलर पैनल लगा ले। कदों तो मेरे सारे दोस्त बोलते सन, पर मैं उदो मन्निया जदो प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैं प्रधानमंत्री जी दे कहन ते सोलर पैनल लगवाया, हुण मेरा बिजली दा बिल जीरो है।

जी हाँ दोस्तों, तुसी ट्यून के 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक ते प्रोग्राम एंजॉय कर रही हूँ जी। लव यू जिंदगी। तुहानू पता ये जिहड़ा टाइम हुंदा है ना, जदों असी कम करके आराम नाल बहिंदे आ, असी सोचदे आ कि अज पूरा दिन मैं की कीता, किसी दे चेहरे ते की मैं मुस्कुराहट लैके आ पाया, या फिर किसी की गल मैनू बहुत ज़्यादा बुरी लग गई। सारिया गल्लां असी उदों सोचते हाँ जदों असी बहुत ज़्यादा आराम दे नाल बैठते हाँ, जदों असी वेले हुंदे हाँ, तो वेला बंदा ओवरथिंक करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जेकर तुसी भी वेले हो, मैनू पता पूरा दिन अज तुसी बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है, काम करना चंगी गल है, लेकिन हाँ अपनी ओवरथिंकिंग नू थोड़ा जिहा साइड करके तुसी वो टाइम अपने घरदिआं नू दे सकते हो। ये ना सोचो किन्ने मैनू की कहा, यह ना सोचो मैं किस परसन नू की कहा, बस ये सोचो कि हुण मैं अपने घरदिआं नू की कहना है, किहड़ी गल इदां दी कहां कि उन्हां दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाए। तुसी उन्हां लई कोई गिफ्ट लै के आ जाओ, ऑफिस दे तो निकल ही रहे हो या फिर जेकर तुसी कार दे विच बैठे हो, जांदे जांदे कोई शॉप देख रहे हो, प्यारा जिहा तुसी गिफ्ट वेख रहे हो, उन्हां लई खरीद के लै जाओ, उन्हां दे चेहरे ते मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी। क्योंकि असी सिर्फ अपने आप नूं लव यू जिंदगी नहीं कहना है, असी अपने पेरेंट्स नूं भी लव यू कहना है। तो चलो जी अगला गीत सुनते हैं, जुड़े हो अपनी दोस्त महक दे नाल, प्रोग्राम सुन रहे हो लव यू जिंदगी। तो अगला गीत असी सुनते हैं लवली।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग दोस्तों। शाम दे 7:03 हो चुके ने एंड काफ़ी चिरां तो बाद शाम दे इस प्रोग्राम दे विच मैं दोबारा एंट्री लई है। सो हाँ जी, फिर स्वागत मैं अपना आप ही कर लेना दोस्तों। शाम दे 7:03 एंड जिवें कि तुसीं जानदे हो कि इस टाइम ते FM रेनबो हाजिर हो जाता है प्रोग्राम लैके फिल्मी दुनिया। एक ऐसी दुनिया जिथे असी फिल्मों के सितारों की जिहड़ी गल है असी करते हैं। सो अज का सितारा बड़ा ही खास, जिन्हों का असी खास डे जिहड़ा है मनावांगे, प्लस खास शख्स की गल कर लिए। जी हाँ, जिन्हां नाम है जी महबूब खान। जी हाँ, महबूब खान जिन्होंने सिर्फ फिल्मां नहीं बनाईयां सगों भारतीय समाज नूं गरीबी, माँ की ममता, इंसानी जज्बातों नूं परदे ते बखूबी उतारिया। सो अज का प्रोग्राम समर्पित होएगा भारतीय सिनेमा के महान डायरैक्टर ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ महबूब खान जी ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਿਬੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ।

क्या खत्म न होंगे कभी ये गम के फसाने, फुरकत के जमाने। क्या खत्म न होंगे कभी ये गम

0: तूने मुझे।
1: दोस्तों महबूब खान बारे असीं अज गल कर रहे हैं, जिन्हां दा जन्म 9 सितंबर 1907 नूं हुंदा है ते अज उन्हां दी डैथ एनिवर्सरी है 28 मई 1964 दे विच। ओह सानूं सारयां नूं हमेशा लिए अलविदा आख जांदे ने पर पिछे छड्ड जांदे ने बहुत सारा खजाना, क्योंकि बहुत सोहणियां फिल्मां सानूं महबूब खान जी ने दित्तियां। सो शुरुआत तो शुरू करते हैं जी। उन्होंने जन्म 9 सितंबर 1907 में गुजरात के बिलीमोरा में होया। गरीब परिवार से संबंधित महबूब खान बचपन तो ही फिल्मों के दीवाने सन। कहा जाता है कि वह घर तो भज के बॉम्बे आ गए क्योंकि उन्होंने सिनेमा नाल बेइंतहा मुहब्बत सी। शुरू उन्होंने घोड़ियां के अस्तबल में काम किया, फिर फिल्म स्टूडियो में छोटे मोटे काम एक्सट्रा रोल किए। वो एक दौर सी जो भारतीय सिनेमा मोन फिल्मों तो टॉकीज फिल्मों वल वध रहा सी। सो पहली फिल्म दसी है कि 1935 उन्होंने अपनी पहली फिल्म जी डायरैक्ट की, जिसका नाम सीगा अल हिलाल। जी हाँ, उस समय से जदों डायरैक्टर सिर्फ मनोरंजन नहीं समाजिक सुनेहे भी देंदे सी। तो तुसीं इमेजिन कर सकते हो कि आज़ादी तो पहला दा 1935 दा वह दौर जदों अंग्रेज़ भी हकूमत कर रहे सन, तो उस दौर दे विच जिहड़ियां सारी फैसिलिटीज़ जिहड़ा सब टैक्नीशियन वर्क वह भी बड़ा मुश्किल हुंदा सीगा, पर बावजूद इसदे उन्होंने अपना जिहड़ा जज्बा अपना जिहड़ा जोर है वह सानूं सारयां नूं दिखाया। तो एक खूबसूरत फिल्म विद द मैसेज जिहड़ी है वह सानूं सारयां नूं दित्ती। सो हालांकि इस फिल्म के गाने तो बहुत पुराने साढ़े को नहीं होंगे, बट यस जी फिल्म उन्होंने एक होर बनाई है अनमोल घड़ी, उस फिल्म के गाने असीच या होर फिल्म जो अवेलेबल ने उस प्ले करा। सो इंजॉय करते हैं अगला गीत।

जी आवाज़ दे कहाँ है, खूबसूरत गीत जो कि तुसी सुनिया, अंदाज़ मूवी जो कि 1970 सॉरी अनमोल घड़ी मूवी जो कि 1946 दे विच रिलीज़ हुई सी इहनां दी, ते उस मूवी दा गाना तुसी हुणे सुनिया। बट यस, अगली फिल्म जिहड़ी है वो अंदाज़ मूवी जो कि 1949 दे विच आउंदी है, जिहदे विच दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब अते नरगिस जी ने काम कीता, ते असीं कह सकदे हां कि बॉलीवुड दे पहले मॉडर्न लव ट्राइंगल ड्रामिआं विचों एक ड्रामा, एक बहुत खूबसूरत ड्रामा जो कि महबूब खान साहब ने आज़ादी तो बाद दी फिल्म जिहड़ी है वो बनाई, जो कि लोकां नूं खूब जिहड़ी है वो पसंद आई।

जी जिन्हियां फिल्मां महमूद खान साहब ने बनाइया, जिस दौर दे विच बनाइया, उन्होंने फिल्मां दा दौर ही बदल दिता। क्योंकि जिन्हियां फिल्मां दी मैं गल कर रहा हूँ, जिवें सब तो पहला फिल्म उन्हां दी आउंदी है 1940 दे विच, सॉरी 1935 दे विच आउंदी है। उस तो बाद 1940 विच एक मूवी होर आउंदी है औरत। इस फिल्म च गरीब किसान महिला दी जिंदगी दे उत्ते फिल्म जिहड़ी है बनती है, ते बड़े वड्डे पद्धर ते उसका कहो कि लोगों ने स्वागत किया। फिल्म दे विच उन्हां दा नाम मदर इंडिया भी रखिया, एंड काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली समाजिक फिल्मों विचों एक फिल्म जिहड़ी है यह गिनी जाती है। उस तो बाद 1946 दे विच एक होर खूबसूरत फिल्म जिसके गाने मैं हुणे प्ले कर रहा सीगा, अनमोल घड़ी, जो कि 1946 दे विच आती है, एक संगीतमई फिल्म जिस विच नूर जहान

क्या बात है, फिल्मा दी फिल्मा गाने भी एक तो एक खूबसूरत महमूद खान जी दी फिल्मा दे। मुलाजमा कि उन्होंने सन्मान जिहड़ा है कीता गया, पद्म श्री नाल सन्मान कीता गया 1963 दे विच, फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, नैशनल अवार्ड्स मिले एंड अकैडमी अवार्ड नॉमीनेशन फॉर मदर इंडिया भी मिलिया। इस अलावा उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच एक गरीब बच्चे नू भी गोद लिया जो कि शायद बहुत लोग नहीं जानते, ते जो कि अगे जा के एक अदाकार बनया जिहदा नाम सीगा साजिद खान। होर भी इन्हां बारे कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट्स ने जो कि मैं अगले इस गीत तो बाद दसना चाहवांगा, पर मदर इंडिया बारे खास गल कि कहिंदे अज भी जदों भी मदर इंडिया की गल हुंदी है महबूब खान का नाम जिहड़ा है बड़ा सत्कार नाल लिया जाता है, क्योंकि वह फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट परपस लई नहीं सी, वो एक तरफ समाज दे विच जो कि जो इनजस्टिस कदे कदे हो जाता है वो खिलाफ़ आवाज़ सी, भारतीय दृष्टिकोण के उत्ते भारत कितना मजबूत एंड भारत के लोगों का किवें एक एटीट्यूड होंदा है, एक किवें व्यवहार होंदा हर चीज़ नूं लैके, वो सारी चीज़ों का एक बहुत खूबसूरत मिश्रण सी फिल्म मदर इंडिया।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Once again, good evening दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार आदाब, जिंदगी जिंदाबाद। रात के 8:04 हो चुके हैं, FM रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है जी मस्ती जंक्शन। दोस्तों इस प्रोग्राम नू तुसी इंजॉय करोगे अपने दोस्त मोहित रुबल दे नाल, एंड बहुत सारी मस्ती करांगे जनाब। बहुत सारी गल्लां च मैं लैके आया खजाना, इधर उधर दी गल्लां मैं फड़ रही हूँ, चाहे मैं कल दे मैच दी गल करां कि किवें 15 साल दे मुंडे ने छक्के मार मार के दुश्मना दे की अपने दे की सब दे छक्के उड़ा दिते, क्योंकि कुछ ऐसा खेले कल दे मैच विच राजस्थान दे 15 साला युवा क्रिकेटर, जिन्हां नू जल्दी तुसी शायद इंडियन क्रिकेट टीम विच वी देख सकते हो। इस तो अलावा होर भी बहुत सारी गल्लां बॉलीवुड दियां, क्योंकि बॉलीवुड में भी बहुत गॉसिप चल रहा, पर गल्लां थोड़ियां मस्ती रिलेटेड आपां करांगे, ठीक है जी। पर थोड़ी जी एक मैं कहना पहला ही गीत अपना थोड़ा जहा तड़कता भड़कता जिहड़ा है असी लगाने आ, ते ओ गाना मैं हुण लभण की कोशिश कर रहा, बस अद्धा क सकिंट होर लगना, उस तो बाद आपां गाना लभ गया लभ गया लभ गया ये गाना, और उस गाने के बाद उस पार गल करेंगे मस्ती जंक्शन प्रोग्राम दे विच नवीं ताजियां।

जी को फिर स्वागत है जी प्रोग्राम मस्त जंक्शन बाय मोहित रूपल एंड लोरी वालों भी। हेलो हेलो हेलो हेलो दोस्त, प्रोग्राम में थोड़ा फोन मिल चुका है, गलबात करिए। हेलो दोस्त भैया डी स्लो पे बोलन देने, दोबारा मौका देने फोन मिला के प्रोग्राम से शामिल हो, फटाफट तुसी फोन मिला सकते हो 0181 23 42 174 0181 23 42 174। मैं तो कहूँगा कि अज वाहवा लोगों का फोन मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग मसरूफ ने, क्योंकि अज बहुत सारी थावों की शबील लगी सी ते हजे भी शायद उधर ही होंगे। बाकी प्रोग्राम दे विच तुसी जिहड़ी है गलबात मेरे ना करो एंड लैट्स सी, है ना, लैट्स सी कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਲਾ ਲੋਹਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲੋਹਰੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ

वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड जिंदगी जिंदाबाद। रात दे 9:03:39:40 हो चुके ने, FM रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका जिसका नाम है जी दिल चाहता है। एंड इस प्रोग्राम दे विच जिवें कि मैं पहला भी हुणे 2 मिनट पहला अनाउंस किया, मैं फिर कर रहा कि तुसी किसी भी हिंदी या पंजाबी फिल्मों के गीतों की फरमाइश जी है तुसी कर सकते हो। तो सानू बस तुसी मैसेज भेजना साडे व्हाट्सएप नंबर 9855101027 ते 9855101027 ते। बहुत सारे दोस्त सानू जिहड़े ने ओह मैसेज भेजदे ने इस प्रोग्राम दे विच, सो तुसी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। तो लाइव चल रहे इस प्रोग्राम दे विच लाइव सानू मैसेज भेज के अपनी लाइव फरमाइश जी है वह पूरी करवा सकते हो। चलो जी दोस्तों का जिहड़ा प्यार ते मैसेज भेजने का सिलसिला जिहड़ा है शुरू हो चुका है, आओ शुरू करते हैं हुण प्रोग्राम नूं। सब तो पहले मैसेज आता है पिंड वड़िंगखेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू, लाडी धालीवाल, जलंधर तो मास्टर मोहन लाल चौंकी, अरविंद कुमार, गायिका सुरिंदर कौर, प्रकाश कौर जी का गीत जरा है बाजर सट्टा। जनाब अगर फिल्म पता है तो फिल्म का नाम लेके दस दो, मैं जरूर गाना जरा है प्ले करा। थैंक यू सो मच फॉर फरमाइश। अगली फरमाइश या अगला मैसेज सू आया जी ईद मुबारक जी, तो हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान तो सू मैसेज भेज रहे हैं रजाक मुहम्मद, समीम बेगम, मैंने इमरान खान, इरफान खान, सभी को ईद मुबारक, थैंक यू सो मच। तो अगे वद्दियां जी मैसेज सू आया है लिखा है फिल्म शागिर्द बोल दिल विल प्यार वार मैं क्या जानू रे, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। दिल विल प्यार वार मैं क्या जानू रे, दिल विल ओके जी मैनू गाना नहीं मिलिया, कोई गल नहीं फिल्म के नाम तो लभ लेने। फिल्म का नाम है जी शागिर्द। ओके जी, सो ये रही ये फरमाइश, ये रहा ये गाना, और दो तीन मैसेज और पढ़ लेते हैं। अगला मैसेज है सत श्री अकाल नेम सोनू एंड मास्टर मोहन लाल विलेज कुका तलवंडी, तो थैंक यू सो मच सानू मैसेज भेजन के लिए। अगला मैसेज सर तक पहुँचा है, मैसेज भेजा लिखे चक 14 PSB तो कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरन गोरा, जनसीर मनु, लवजीत गंगू की ओर से नमस्कार जी, किसी भी गीत में शामिल करो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, तुहानू शामिल कर लिया गया जी, बहुत बहुत मुबारक। अगला मैसेज आया सत श्री अकाल सोंग बड़े बेवफा हैं ये हुसन वाले मूवी रूप तेरा मस्ताना, सिंगर मोहम्मद रफ़ी, और रिक्वेस्ट भेजी है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। ठीक है जी, फिलहाल मैं शागिर्द मूवी का जरा गीत है दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, बट FM रेनबो चंगी तरह जानता है, इस करके थोड़िया फरमाइशा भी प्ले करता है प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच। फटाफट तुसी प्रोग्राम दे विच मैसेज भेजो, सो व्हाट्सएप नंबर है 9855101027।

नमस्कार। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे यादव, श्री प्रशांत राजे यादव, कुमार सचिंत वायाल कुमार, प्रथमेश देशमुख कुमारी, प्रणाली देशमुख कुमार, सर्वत देशमुख कुमारी, सानवी देशमुख कुमारी, कल्पना देशमुख, समस्त राजे यादव देशमुख वायाल परिवार, फिल्म कुर्बानी गायक किशोर कुमार और अनवर, बोल कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। ठीक है जी, इस गीत नूं चला दिंदे आ क्योंकि दोस्त होर भी जिहड़े ने सिमिलर फरमाइश जिहड़ी कर रहे सीगे, ते लो जी सुनदे आ इस गीत नूं प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच।

ये रही, और थैंक यू सो मच जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज आया जी। लिखा है मैसेज, गाने के बोल, हाल क्या है दिलों से ना पूछो। सनम आवाज, किशोर कुमार, फिल्म अनोखी, अदा, मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, शुभम धीमान, आंचल कुंज पर्व, प्रवीण एंड चिराग, रजत, राजेश धीमान। सर जी नमस्कार, दिल चाहता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आपकी मीठी आवाज में ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, इसी तरह से हमारा मनोरंजन करते रहें, हम आपकी पसंद प्रशंसा करते रहेंगे क्योंकि आप प्रशंसा के लायक हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। आगे बढ़ते हैं, मैसेज आया, फिल्म बादल गीत के बोल, ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार ना हो जाए। अरे ये बड़ा प्यारा गाना, ना मिलो, ना मिलो, ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार ना हो जाए। जी हाँ, ओके जी, ये गाना गाया है सोनू निगम और कविता कृष्णा मूर्ति जी ने। थैंक यू सो मच, ये फरमाइश भेजी हमें दातार सिंह शेखावत, संगीता कुंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। ओके जी, अगला मैसेज, करणवीर हाउस, पुच्चो कैंचियां, बठिंडा पंजाब से, नमस्कार जी। परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत, किसी भी गीत में शामिल करो। ओके जी, अगला मैसेज, सर जी नमस्कार, सर जी बहुत समय बाद मैसेज प्रोग्राम में भेज रहा हूँ, कृपया किसी भी गीत में शामिल करें, उम्मीद है शामिल किया जाएगा, डेफिनेटली किया जा रहा है। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू जी, अगला मैसेज आया है, मिस्टर इंडिया, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फरमाइश में भेज रहे हैं, मुक्कम पोस्ट, फुल चिंचोली, तालुका पंडरपुर, जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुभान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर और चाचा और चाची और पूरा मुलानी परिवार। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर दी फरमाइश। अगला मैसेज, धरनिया जी, आदाब जी, आपके सभी प्रोग्राम बहुत ही सुंदर होते हैं जी, फिल्म आंखें मिलती हैं जिंदगी में, मोहब्बत कभी कभी ये सुनाएं। और श्रोता हैं जय विहार नजफगढ़ से, शाहरुख, फारूक, शबनम और शहनाज। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फिलहाल हमें ये जो फरमाइश आई है बादल फिल्म की, इनका जो गाना है, ना मिलो कहीं प्यार ना हो जाए।

जी सबसे जुदा है फिल्म रेनबो, इसलिए सारे इस पर हैं फिदा और इसीलिए भेज रहे हैं इतने सारे मैसेजेस। जी हाँ, प्रोग्राम दिल चाहता है में आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9855101027, है ना 9855101027। लो जी अगे बढ़ते हैं, अगे साढ़े को मैसेज पहुंचा है, लिखा है, बहुत लंबा मैसेज है। प्रोग्राम दिल चाहता है, आदरणीय कार्यक्रम प्रसारक जी, सलाम में मोहब्बत कबूल हो, दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल, प्यारे बेटे चटकू मटकू जी, कृपया हमें फरमाया जरूर पेश करना जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमारी पसंद।

अगर गाने के बोल है कि ना मिलो कहीं प्यार ना हो जाए, नहीं नहीं मैं इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि हाँ मिलो, पर मिलो एफएम रेनबो को, मिलो आकाशवाणी को, क्योंकि इतने सारे दोस्त अगर हमें मैसेज भेज रहे हैं तो भाई उस प्यार में भी मजा तो होगा ही। ओके जी भाई, मैं ना हिंदी च तां चल जाना क्योंकि सारे मैसेज ना हिंदी च आए होंगे ने। खैर प्रोग्राम तुसीं इंजॉय करो जिसका नाम दिल चाहता है, एंड दिल चाहता है दे विच होरां लोकां दा दिल की चाहुंदा है सानूं मैसेज भेज रहे ने। आओ पढ़दे हां इन्हां दे प्यारे प्यारे मैसेज। लिखा है सर प्रेम नमस्कार जी, किस विकेट में शामिल किया जाए? गांव खोखरा वाली श्री श्री गंगानगर से विनोद, बारासा, विशाल, विकास, रोशनी, शगुन और आपका हर पल खुशियों से भरा रहे। इन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज प्रेम पूर्वक आदाब, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सर नाजिया, आफिया, इब्राहिम सदाम, अदीब हसन, एनी सॉन्ग अपनी पसंद में। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड आपको भी ईद मुबारक। अगला मैसेज है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरलाल, अविराज और पोत्रे गुरनूर सिंह एंड शुभदीप सिंह। फिल्म कभी कभी और गीत के बोल तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। अरे क्या बात है। ठीक है जी, अगला मैसेज गुरमीत सिंह मीन साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो, थैंक यू जी। अगला मैसेज मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, लिखा है हमारी प्लेलिस्ट में से किसी भी गीत या किसी भी अन्य सदाबहार गीत में हमें शामिल करें, फिल्म कोयला और ये वो ये वो। ठीक है जी, कुछ अलग सा कोई गाना हो तो मैं ज़रूर करूँ। कोयला तो नहीं, क्रिमिनल नहीं, सदमा, सदमा का लगा लेते हैं। ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। जिंदगी गले लगा ले। ओके जी, ठीक है जी, आपकी फरमाइश आज फाइनली काफी दिनों के बाद पूरी कर ही दी। अगले मैसेज सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, कार्यक्रम दिल चाहता है, फिल्म आओ प्यार करें और ये फरमाइश भेजी है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। अगले मैसेज पहुंचे नमस्कार सर जी, मैं सुषमा धालीवाल जलंधर तो, सर इम्तिहान मूवी का सॉन्ग लगा दीजिए चुरा के दिल को जा रहे हो। ओके जी, ठीक है जी, फिलहाल इंजॉय कर रहे हैं मूवी सदमा का इस गीत नूं ते टाइम अप होगा रहेगा सिर्फ 20 मिनट। फटाफट प्रोग्राम सानूं मैसेज भेजो, साडा व्हाट्सएप नंबर है 9855101027।

लो जी, ये जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी इज इक्वल टू FM रेनबो, एंड यस FM रेनबो गले लगा ली थी आ रहे, क्योंकि सी भी लगाया है, अदरो सी लगा रहे, अदरो तो सी लगा ले गया बात है। ओके जी, अगला मैसेज आया जी, सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सनी मुनी काका, बिट्टू लाटी मोन मास्टर, जनक नगर जलंधर तो लिख रहे फिल्म स्वर्ग, एंड ले गया मोहित रुबल जी, क्या बात है, क्या बात, थैंक यू जी, थैंक यू। अगला मैसेज, एनी सॉन्ग टू रीड आउट माई नेम प्लीज आर्य जी, फ्रॉम नेम हितेंद्र दास, स्टेट असम। ओके जी, थैंक यू जी। गाँव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, परमीला ढुकिया, ज्योति सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम ढुकिया, कोई भी गीत सुना दीजिए। ओके जी, धन्यवाद। अगला मैसेज है, नमस्कार रिस्पेक्टेड हो, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन टिकेस्ट्रो, रोजी टिकेस्ट्रो, पर्ल टिकेस्ट्रो, वालिस डिकेस्ट्रो, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज आया है, प्रीतम सिंह, पंकज अरोड़ा, संदीप सिंह, अमरजीत कौर, सरोज एंड मोनिका, बस्ती लाडू वाली, फिरोजपुर, सिंगर एमी वर्क। ओके, अगला मैसेज है, पिंड हीरा वाली, जिला फाजिलका तो पक्के श्रोता, सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा, सत श्रीकाल जी, प्रोग्राम दिलचस्प लाइव सुन रहे हैं, रात की सभा का प्रोग्राम पहली पसंद बन गया, अज हो सके तो दो लच्छियां फिल्म का कोई भी गीत जरा सुना दो। ओके, दो लच्छियां, ठीक है जी, ओदा मैं गीत सुना देवा तुहानू, मैं भावें बोल तो भावें ना बोल, शमशाद बेगम जी का बड़ा खूबसूरत गीत, आओ इंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम।

ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਏ ਨੇ ਪੱਕਾ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ 12 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ 9-10 ਪਰ ਡਾਲਾ ਥਾ ਜੀ ਆਪ ਹਮੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੀਤ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਰਘੁਵੀਰ ਨਗਰ ਸੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਹਸੀਨਾ ਬਾਨੋ ਏਲੀਆ ਨਯਾਬ ਔਰ ਲੱਡੂ और दोबारा मैसेज पढ़ लेते हैं उन्होंने क्या लिखा था लिखा है आदरणीय जी आदाब जी हमारा मैसेज कहाँ गया आप हमें किसी भी किस्म में शामिल कर दीजिए और ये रहा मैसेज आपका ठीक है जी आपने जो फरमाइश भेजी थी वो तो हम नहीं प्ले करेंगे क्योंकि वो रेगुलर ही आ जाती है फिल्म सूरज की फरमाइश भेजी थी आपने बाहर फुल बरसाओ पर आपका नाम ले लिया गया है थैंक यू सो मच अगला मैसेज है चुटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा प्रियंका शर्मा गाने के बोल मेरे पी को पवन कहाँ ले चली ओके जी और अगले मैसेज आया जी हमने आपके प्रोग्राम में पहली बार मैसेज किया है हमारा मैसेज भी शामिल कर लेना इतने मैसेज आप भेजते हो हमारे प्रोग्राम पहली बार किया है ठीक है होली चौंक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल सचिन खोरवाल अमन खोरवाल दीपांशु खोरवाल फिल्म छलांग सोंग केयर नहीं करता अच्छा शायद साढ़े को मैसेज सॉरी गाना जड़ा है होगा छलांग नहीं निकलिया ओके केयर नहीं करता है ना यह गाना शायद सीगा बट मैनू हूँ नहीं मिलया आ तो गया बट ओके खैर आगे बढ़ते हैं अगे सानू मैसेज पहुँचा है सुरेश राठौड़ यह मैसेज रीड कर लिया अपना ओके अगला मैसेज है नमस्कार जी मैं संदीप जलंधर तो छला सौंग ला दो गुरदास मान साहब का थैंक यू अगला मैसेज प्रोग्राम दिल चाहता है पेश करने वाले आर्जन प्यार प्रति सत श्रीकाल आदाब किसी भी गीत में शामिल करो धनबाद जी पिंड डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जिंद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा जतेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर धनबाद करते हैं जी ठीक है जी थैंक यू सो मच अगला मैसेज आया जी फिल्म सौदागर बोल सजना है मुझे सजना के लिए राम सिंह पोस्ट जिला श्री गंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर पवन राजेश अजय राहुल व मनु बब्बर ठीक है जी अगला मैसेज है जी नमस्कार आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद किसी भी सिंह सॉन्ग में हमें शामिल करिए रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी खेमलता हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी अगला मैसेज गंगानगर से केशव शर्मा फिल्म दूजा विवाह सॉन्ग अखियां च भले अखियां ओके लेट मी ट्राई दिस मूवी दूजा ਵਿਆਹ ਓਕੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਭਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ ਗਾਣਾ ਲਓ ਜੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਕੁ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈਏ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਕੋ ਸਵ ਪ੍ਰੇਮ ਨਮਸਕਾਰ ਫਿਲਮ ਨਾਮ ਗੀਤ ਤੂੰ ਕੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਲਮ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਭਜੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਕੜਵਾਸਰਾ ਸਚਿਨ ਸਤੀਸ਼ ਯੋਗੇਸ਼ ਔਰ ਯੂਧਵ ਕੜਵਾਸਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਕੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾ ਘਮਾਗਣ ਸਾ ਘਮਾਗਣੀ ਜੀ ਘਮਾਗਣੀ ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਲੋ ਸਰ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਆਮ ਰਵਿੰਦਰ ਫਰੋਮ ਜਲੰਧਰ ਸੌਂਗ ਮਿਸਟਰ ਨਟਵਾਲਾਲ ਫਿਲਮ ਐਨੀ ਸੌਂਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਐਨੀ ਸੌਂਗ ਪਹਾੜਗੰਜ ਮੁਲਤਾਨੀ ਡਾਂਡਾ ਸੇ ਅਨਿਲ ਮੋਹਨ ਊਸ਼ਾ ਮੋਹਨ ਟੀਲੂ ਨਾਇਕ ਕੈਥਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਮਧੂ ਨਾਇਕ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿਲਰਾ

आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। कि बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, रात दे पूरे 10:01 हो चुके ने, एन एफ एम रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है जी शामे गज़ल। एंड अज दे प्रोग्राम दे विच स्टार्टिंग तो पहला जिहड़ी मैं एक गज़ल दियां चार लाइना पढ़िया ने, वो लाइना ने बशीर बदर जी दियां, जिन्हां नूं अज असी सदीवी कह लो कि विछोड़ा साढ़े को लै चुके ने, सानू हमेशा लिए अलविदा आ गए ने। एंड भारत दे प्रसिद्ध, दुनिया दे विच प्रसिद्ध उर्दू शायर ते साहित्यकार बशीर बदर जी, जो कि अपनी सोहनी 91 साल की उम्र जिहड़ी है हंडा के गए ने। पर एक आर्टिस्ट जो जांदा है तां दुख तां लगदा ही, क्योंकि उन्होंने पिछे बहुत कुछ सानूं सिखाया ते बहुत सारियां गज़ल्स उन्होंने लिखिया, जो कि अज्ज प्रोग्राम च मैं कोशिश करांगा उन्हां दी गज़ल्स नूं प्रोग्राम दे विच मैं शामिल करा। सो इस प्रोग्राम दे विच तुसी भी शामिल हो सकते हो। अगर तुसी बशीर बदर साहब की कोई भी पोएट्री, कोई भी गज़ल जो तुसी पसंद करते हो तो तुसी भी सानू मैसेज जिहड़ा है भेज सकते हो, ते असी उस मैसेज नू प्रोग्राम दे विच

ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां नहाने लगी, नदी गुनगुनाई ख्यालात की। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, जबां सब समझते हैं जज्बात की। के मुकद्दर मेरी चश्मे पुर आब का, बरसती हुई रात बरसात की। के कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहां दिन गुजारा कहां रात की। एक खूबसूरत गजल भी लिखी है बशीर बद्र साहब ने। जी दोस्तों, प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो शामी गज़ल, एंड अज के प्रोग्राम दे विच असी दो तो तीन गज़लां जिहड़ियां ने पढ़न की कोशिश की है बशीर बद्र साहब दियां, जो कि अज सानू इस दुनिया नूं अलविदा आ गए ने, पर पिछे बहुत सारियां गज़लां शायरियां साडे लई छड्ड चुके ने, जिन्हां नूं पढ़ पढ़ के समझ समझ के बहुत सारे लोग जिहड़े ने शायद अपनी जिंदगी सवारनगे या अपने थॉट्स उन्हां विच लभणगे, क्योंकि शायर कवि जो लिखदा है वह दुनिया तो जिंदगी तो ही इंस्पायर हो के अपनी खुद की जिंदगी या लोगों को देख के जो उन्होंने थॉट्स आते हैं उसनों पेन डाउन कर देने। सो उस नाल ही बहुत सारे लोग जिहड़े शायद लिख नहीं पाते बोल नहीं पाते वह रिलेट करते हैं। सो बहुत खूबसूरत लिखी एक एक चीज़ बशीर बद्र साहब ने।

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। प्यारे दोस्त, एंजॉय कर इसी प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। फिलहाल रात दे 10:55 हो चुके ने, आओ हुण एंजॉय करते इस प्रोग्राम दा आखिरी